सुप्रभात अंबाला, स्वागत है आप सभी का आज के प्रसारण में। आज है 11 मई 2026 सोमवार, ज्येष्ठा कृष्ण पक्ष नवमी 2083 विक्रम संवत। अंबाला में सूर्य उदय हुआ है 5:32 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:07 पर।

इंसान को जब थोड़ा सा भी अधिकार मिल जाता है तो वो अभिमानी प्रभु परमात्मा के भी विपरीत बोलने लगता है और ऐसे घिनौने कार्य करता है जिन्हें देखकर देवता भी रो पड़ते हैं।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विदस्ता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का

0: जी हाँ, आज सोमवार है। आप जहाँ भी हैं, अपने रेडियो सेट के पास आएं। अपने शारीरिक समस्याओं के निदान के लिए सुनिए हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर सुजाता संजय, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ से की गई बातचीत। विषय है रसोली। बात करेंगे मनीषा नेगी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ से।
2: आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर सुजाता संजय। मैं महिला और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ, यानी कि महिलाओं से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, उसका इलाज करना या उसका देखरेख करना वो हमारा काम होता है। और मुझे तकरीबन 15 से 20 सालों का अनुभव हो चुका है इस कार्य में।
3: तो मैम, जैसे कि हमने बताया कि आज हमारा विषय होगा बात करने का रसौली यानी गर्भाशय की गांठ, तो सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को इसी पर जानकारी देंगे कि रसौली होता क्या है, इसका अर्थ क्या है।
2: देखिए, रसौली को हम जन सामान्य की भाषा में बहुत सारे शब्दों से बोलते हैं। कुछ लोग गांठ बोलते हैं, कुछ लोग रसौली बोलते हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो इसको सिस्ट का नाम देते हैं। तो मैं ये बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगी कि ये सिस्ट नहीं होती, इसे आप रसौली या गांठ कह सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि रसौली और गांठ कहाँ पाई जाती है, तो इसके पाने की जगह भी अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ रसौली बच्चेदानी के भीतर होती है, कुछ रसौली बच्चेदानी के बाहर होती है। तो इनका इलाज भी इसी कंडीशन पे निर्भर करता है कि रसौली किस प्रकार की है। फिर आता है कि रसौली का मतलब क्या होता है। रसौली का मतलब होता है कि कई बार हमारी बच्चेदानी में कुछ बहुत सारे टिश्यूज होते हैं जिनकी एक प्रकार से ग्रोथ हो जाती है, और वो ग्रोथ होने की वजह से वहाँ पर एक गांठ बन जाती है, जिसे आप रसौली या फाइब्रॉइड या गर्भाशय की गांठ, ये सब नामों से जानते हैं। क्योंकि ये तो एक नाम है जो आपको अल्ट्रासाउंड में देखने से पता चलता है या आपको डॉक्टर बताते तब पता चलता है, लेकिन बेसिकली हमें जो फोकस करना होता है वो इस पर फोकस करना होता है कि ये कैसे आप जान सकते हैं कि आपको कोई समस्या है जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है, जिसके लिए अभी हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या सिम्टम्स या बदलाव आते हैं।
3: जी।

0: हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि पहले रसौली होने के कारण क्या होते हैं।
1: कारण बहुत सारे हो सकते हैं। कारण का मतलब ये होता है कि किस वजह से रसौली हुई। तो अक्सर ये होता है कि कई बार तो ये जेनेटिक कॉज होते हैं। जेनेटिक कॉज का मतलब होता है, अगर मान के चलिए मैं एक बात कहूँ कि किसी के परिवार में बार बार किसी को रसौली की शिकायत होती है, यानी कि माँ को भी रसौली है, तो इन परिस्थितियों में बेटी में होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसे हम जेनेटिक कॉज कहते हैं, यानी माँ से बेटी में भी बहुत बार ये समस्या आ सकती है। दूसरी ये होती है कि हार्मोन्स की गड़बड़ियाँ। हार्मोन्स की गड़बड़ी का मतलब ये होता है कि अगर आपके किसी कारण आपके पहले से ही डेट रेगुलर नहीं है, उसमें बदलाव बहुत ज्यादा है, टाइम टू टाइम नहीं आती है, तो ये हार्मोन्स का डिस्टरबेंस बहुत बार आपको रसौली की समस्या को पैदा कर सकता है। तीसरा कारण होता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन की समस्या रहती है, तो उसकी वजह से भी रसौली हो सकती है। अक्सर लोगों को ये लगता है कि रसौली का मतलब ट्यूमर होता है। ठीक है, कोई भी गांठ होती है शरीर में, उसको हम ट्यूमर का ही नाम देते हैं, लेकिन ट्यूमर भी दो प्रकार का होता है, एक बिनाइन और एक मैलिग्नेंट। यानी कि एक हो जाता है लेकिन ट्रीटमेंट होता है तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन दूसरा होता है मैलिग्नेंट, यानी कि अगर वो होता है तो कईयों बार वो डेंजरस हो सकता है, आपको दिक्कत दे सकता है। तो यूजुअली जो रसौली होती है उसको हम एक बिनाइन कैटेगरी में डालते हैं कि अगर ये हो जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसका ट्रीटमेंट कराने से ये ठीक भी हो जाती है और आपको जान का कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन 1-8% केसेस में ये देखने को मिलता है कि कभी कभी रसौली बहुत खतरनाक होती है और वो मैलिग्नेंट भी हो सकती है, अगर आप अनदेखा करें तो उससे मरीज की जान को खतरा भी हो सकता है।
0: जी, और मैम आप यही जानना चाहेंगे कि जब किसी को रसौली होती है तो उसके लक्षण क्या होते हैं उसमें।
1: देखिए, जब कोई भी बदलाव आता है, यानी कि आपको वो बीमारी के रूप में आता है, तो उसके आप लक्षणों से समझ सकते हैं। इन केस अगर आपको लगता है कि रसौली हो गई है, तो उसमें सबसे पहला पेशेंट को जो चेंज नोटिस करने को मिलेगा वो ये होगा कि उनको जो महावारी है, मेंसेस, जो पीरियड्स आ रहे हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली इररेगुलर हो जाएंगे। इररेगुलर का मतलब होता है जो साइकिल आइडियली आपका 5 to 6 days रहता है और एवरी 28 to 38 days पर रिपीट होता है। तो रसौली के मरीजों में क्या होता है कि जो आपकी महावारी आती है वो तकरीबन 10 से 15 रोज तक चलती ही रहती है, यानी कि उनको ब्लीडिंग कंटिन्यूअस होती रहती है। फिर कुछ दिन का ब्रेक होता है, उसके बाद उनको दोबारा ब्लीडिंग की समस्या चालू हो जाती है। तो ये तो पहला सबसे सामान्य लक्षण होता है जिसे वो समझ सकते हैं कि यानी अत्यधिक ब्लीडिंग का होना और लंबे समय तक उस ब्लीडिंग का चलना और महीने में तकरीबन आपको एवरी मंथ 2-2 बार मेंसेस का हो जाना। दूसरा, अक्सर लोग इससे कंफ्यूज होते हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि हाँ जी हमको ब्लीडिंग की समस्या तो है लेकिन हमें कोई दर्द तो है नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहूंगी अपने लिसनर्स को कि ब्लीडिंग अक्सर रसौली के मरीजों में पेनलेस होती है, यानी कि उसमें दर्द नहीं होता है। तो जरूरी नहीं है कि दर्द का होना ही आपको बीमारी बताए। कहने का मतलब ये है, क्योंकि बहुत बार बिना दर्द के भी अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है और वो रुक नहीं रही है और उसमें बहुत ज्यादा आपको ब्लीडिंग, ब्लड लॉस हो रहा है, तो इसकी वजह आपकी रसौली हो सकती है।
0: जी,
1: तो ये सबसे सामान्य कारण होता है, सामान्य लक्षण होता है। और फिर इसके बाद आता है कि एसोसिएटिंग लक्षण, मतलब कि अगर आपके बच्चेदानी में रसौली आ गई है तो ब्लीडिंग तो आपको रहेगी ही, इसके साथ साथ आपको दूसरी समस्या होंगी, जैसे कि यूरिन का बार बार आना। बहुत बार मरीजों को लगता है कि उनको पेशाब के रास्ते से जलन हो रही है या पेशाब जल्दी जल्दी आ रहा है, तो हो सकता है उनको पेशाब का इन्फेक्शन हो, लेकिन ये पेशाब का इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि बच्चेदानी में रसौली की शिकायत है, इसलिए आपको उससे संबंधित पेशाब में समस्या हो रही है। और बहुत बार ऐसे मरीजों जिनको की रसौली है, उनको ये भी देखने को मिलता है कि उनको कब्ज की शिकायत रहने लगती है, उनको मोशन बहुत हार्ड होते हैं, उन्हें जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि रसौली की वजह से बच्चेदानी का आकार बढ़ता है, जिसके वजह से पेशाब के रास्ते में भी दिक्कत होती है और लैट्रिन के रास्ते में भी समस्या हो सकती है। तो खाली ब्लीडिंग के साथ साथ अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे को ऐसी भी दो समस्याएं हो रही हैं, तो हो सकता है कि इसकी वजह आपकी बच्चेदानी से संबंधित रसौली हो सकती है।
0: जी मैम, यानी कुल मिला के जब रसौली होती है तो मरीज के शरीर में ये लक्षण दिखते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, अगर किसी महिला को ऐसा लग रहा है कि मुझे ये समस्याएं हैं, तो उसको अनदेखा नहीं करना है। बहुत बार महिलाएं ये सोचती कोई बात नहीं, इस बार ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, हो सकता है मेरे को हार्मोन्स की गड़बड़ी हो गई, या मैं बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ, या मैं खाने पीने का ध्यान नहीं रख रही हूँ। और अक्सर ऐसा समस्या उन लोगों में भी होती है जिनमें महावारी बंद होने वाली होती है, तो जब वो आपस में एक दूसरे से बात करते तो लोग एक दूसरे को बोल देते हैं हाँ जी हमारी महावारी बंद होने को थी, तो ऐसी समस्या हो रही थी, तो वो भी अनदेखा कर देते हैं, तो उनको भी ये ध्यान रखना है कि माहवारी बंद होते वक्त भी रसौली की शिकायत हो सकती है और रसौली की वजह से ये हो सकता है कि आपकी ब्लीडिंग स्टॉप ना हो। तो अगर ऐसा कुछ भी लग रहा है ना, तो बेटर है कि एक बार आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें।
0: जी, और मैम इसके इलाज क्या होंगे? अगर किसी को रसौली होता है तो किस प्रकार से इसका इलाज करवाना चाहिए?
1: देखिए, पहली चीज तो ये जानना जरूरी है कि आजकल रसौली होने की कोई उम्र नहीं है। किसी भी उम्र के मरीज में रसौली हो सकता है। मैंने रसौली 20 से 30 साल की महिला में भी देखी है। मैंने रसौली में वो भी पेशेंट देखे हैं जिन्हें प्रेगनेंसी के दौरान रसौली हो जाती है। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर रसौली है तो प्रेगनेंसी रख पाना मुश्किल होगा। हाँ, मुश्किल होता है, लेकिन गिराना उसको सोल्यूशन नहीं होता, उसे रखना चाहिए। और अनुभवी डॉक्टर से जब आप इलाज कराते हैं तो समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसको डील ना किया जा सके। मैं अगर अपने अनुभव की बात करूं तो मैंने ऐसे तकरीबन 25 से 30 मरीज हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान जिनको रसौली हो गई थी, एक नहीं तीन तीन चार चार रसौलियां थी। तो ऐसे मरीजों को हम लोगों ने ट्रीटमेंट दिया, 9 महीने तक पहुंचाया, प्रेगनेंसी अच्छे से हुई, डिलीवरी भी बहुत अच्छे से हुई और साथ ही साथ रसौली भी निकाली। तो अगर ऐसा होता तो घबराने की जरूरत नहीं होती। मैंने 30 से 40 वर्ष की उम्र की महिलाओं में भी रसौली की शिकायत देखी है और 40 के पार वालों में भी रसौली की शिकायत देती है। तो रसौली का ट्रीटमेंट सबसे पहले तो निर्भर करता है एज पर कि आपकी एज क्या है। दूसरा निर्भर करता है कि रसौली किस प्रकार की है। जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि कुछ रसौली बच्चेदानी के अंदर होती है, कुछ बाहर होती है। तीसरा ये निर्भर करता है साइज पर। अगर रसौली मान के चलिए बहुत बड़ी है, आपकी 10 से 15 या 20-25 सेंटीमीटर की है, तो नो डाउट उस रसौली को निकालना ही समझदारी है, क्योंकि इतनी बड़ी रसौली दवाइयों से गल नहीं सकती है। जैसे मेरा खुद का भी अनुभव है, मेरे पास एक मरीज आया था, ऑलरेडी वो पहाड़ों सत्यूर से ही आए थे, तो उनकी कभी रसौली छोटी रही होगी तकरीबन 6-7 सेंटीमीटर के आसपास, क्योंकि तब डिसीजन जो भी रहा बट वो रसौली नहीं निकाली गई। तो जब मैंने ये पेशेंट देखा तो उनकी रसौली उस वक्त तकरीबन 20 से 25 सेंटीमीटर की हो गई थी। तो आप समझ रहे हैं ना कि कईयों बार समय के साथ बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उस परिस्थिति में उस रसौली को निकालना कोई आसान काम नहीं होता। वो अपने आप में चीजें बहुत खतरनाक हो जाती हैं और ब्लड लॉस अलग होता है। फिर चौथा ये ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आप उम्र के किस पड़ाव में है। यानी मान के चलिए फैमिली आपकी कंप्लीटेड है और रसौली से आपकी बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, आपका ब्लड रुक नहीं रहा है, तो बहुत बार हमें रसौली निकालनी पड़ती है। और रसौली अगर छोटी होती है और इतनी ज्यादा समस्या नहीं होती है तो दवाइयों से भी रसौली को गलाया जा सकता है। तो ट्रीटमेंट भी हमेशा इन सारी चीजों को देखकर ही डिसाइड किया जाता है कि किस मरीज में क्या इलाज करने से उसको फायदा होगा।
0: जी मैम, हमें कुल मिलाकर अगर ये लक्षण दिखते हैं तो हमें समय से इलाज करवाना चाहिए अपने डॉक्टर से।
1: हाँ, अगर आप बात कर रहे हैं रसौली की या कोई भी अन्य बीमारी के लिए, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको कोई भी ऐसा बदलाव लग रहा है जो सामान्य से हटकर है, तो सबसे पहले आप डॉक्टर को दिखा लें। फिर जितनी जल्दी बीमारी पकड़ में आती है उतना ही जल्दी उसका इलाज चालू हो जाता है और उतना ही आसान इलाज होता है। जरूरी नहीं है कि हर केस में ऑपरेशन ही करना पड़े, दवाइयों से भी ठीक होता है, बशर्ते कि थोड़ा जल्दी पता लग जाए, गांठ छोटी रहे, तो इलाज करना आसान होता है।

0: मैम, हमने अभी तक काफी ज्यादा जानकारी रसौली पर जानी है। तो लोगों में क्या होता है कि अगर रसौली या कोई भी बीमारी होती है तो लोग बहुत ज्यादा घबराते हैं। तो इस स्थिति में सबसे पहले हमें इस रसौली से क्या बचाव करने चाहिए, कैसे इससे बचाव हो सकता है और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जब रसौली रोग हो जाता है?
1: देखिए, अगर बचाव है तो बचाव, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि हार्मोन्स की गड़बड़ी से ये समस्याएं पैदा होती हैं, तो बेटर है कि हमें शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारा वजन ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो। कम वजन भी समस्याएं पैदा करता है हार्मोन्स की। दूसरा, हमारी डाइट का हमें ध्यान रखना चाहिए कि खाने में हमें हर चीज पोषक तत्व लेने चाहिए। तीसरी चीज, अगर आपको ऐसा लगता है, जैसे मैंने बोला कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी ब्लीडिंग में कोई समस्या है या परेशानी है या आपको सफेद पानी या इन्फेक्शन की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, तो इसका समय पे इलाज करवा लीजिए। तो बहुत बार बच्चों को ये समस्या होती है तो पेरेंट्स को ये लगता है, माँ बाप को, कि जरूरी नहीं है कि इसका भी कोई इलाज कराना, समय आने पर देखा जाएगा। तो उस वक्त जो आप इलाज में अनदेखी करते हैं तो वो आगे जाके एक बड़ी समस्या में बदल जाता है। चौथा, ये मैं जरूर सलाह देना चाहूंगी, अगर किसी बच्ची के डेट्स रेगुलर नहीं है, अगर उनको मेंसेस टाइम टू टाइम नहीं आते हैं और हर महीने नहीं होते और खुलकर नहीं होते हैं, तो इस चीज को बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। ये पहला साइन होता है कि आपके शरीर में हार्मोन्स बदल चुके हैं। या वो भी मरीज आते हैं इस कैटेगरी में जिनको ब्लीडिंग होती है लेकिन वो रुकती नहीं है, तो अगर ऐसा कोई भी हार्मोनल चेंजेस आता है तो तुरंत ट्रीटमेंट के लिए आ जाना चाहिए, क्योंकि जब आप इलाज कराते हैं तो हार्मोन्स में जो बदलाव आया उसको रोका जा सकता है। अन्यथा अगर आप ये नहीं कराते हैं तो आगे जाके उसमें रसौली की संभावना बढ़ जाती है। और ऑलरेडी जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। शरीर की सफाई के साथ साथ हम उनकी भी बात कर रहे हैं जो ड्यूरिंग द मेंसेस, महावारी के दौरान हम अपनी देखरेख कैसे करते हैं। तो इन सब बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो देखिए, काफी हद तक तो किसी भी प्रकार की बीमारी होने की संभावना ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। फिर आपने जैसे दूसरा सवाल किया कि अगर हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसका ये जवाब है, अगर मान के चलिए कोई भी बीमारी होती है तो सबसे पहले आपने लक्षणों से पहचान कर ली और डॉक्टर से जाकर परामर्श किया। जब आप डॉक्टर से परामर्श करते हैं तो वो आपका रूटीन चेकअप करते हैं और एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अगर मान के चलिए अल्ट्रासाउंड में कोई भी बीमारी आती है, चूंकि हम आज परिचर्चा कर रहे हैं कि रसौली के ऊपर, तो अगर मान के चलिए रसौली ही निकल कर आती है तो घबराने की जरूरत नहीं होती है। डॉक्टर पहले हमेशा ये कोशिश करते हैं कि ये दवाइयों से ठीक किया जा सके और साथ में मरीज की दूसरी कोई भी समस्या उसका भी इलाज किया जा सके। और दूसरा, अगर मान के चलिए 1% भी अगर रसौली बड़ी हो गई है, बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है और मरीज को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है और उनकी उम्र करीबन 45-50 के आसपास है, यानी कि उनका परिवार भी पूरी तरीके से बना हुआ है, तो इन परिस्थितियों में अगर रसौली निकालनी पड़े तो उसको निकलवाने में कोई नुकसान नहीं होता है, तो वो रसौली निकलवाने की जरूरत पड़े तो निकलवा भी देना एक सही निर्णय हो सकता है। और कईयों बार तो ये है कि अगर आपकी उम्र बहुत ज्यादा है और रसौली बार बार बन रही है, क्योंकि यहाँ हम अपने लिसनर्स को ये भी क्लियर करना चाहेंगे कि रसौली की समस्या ऐसी होती है कि ये एक बनने के बाद दोबारा फिर से बन सकती है, तो इन परिस्थितियों में भी मरीज को देखना पड़ता है कि अने बार बार रसौली बन रही है और उसको तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, उसका ब्लड रुक नहीं रहा है और मरीज दिन ब दिन वीक होता चला जा रहा है और उसकी उम्र करीबन 45 से ऊपर है, तो इन परिस्थितियों में बच्चेदानी निकालने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो इलाज किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये बीमारी लाइलाज हो, बस घबराने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है।
0: जी, और मैम इसके बारे में एक आखिरी सवाल है मेरा कि आज के समय में जैसे खानपान बदल रहा है सभी लोगों का, तो जागरूकता क्या होनी चाहिए इससे कि ये स्थिति ना आए रसौली होने की, इससे लोगों के किस प्रकार जागरूक रहना चाहिए?
1: देखिए, सबसे बड़ी बात तो है खानपान की ही। हम जो ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि लोगों को अपने खानपान का ध्यान रखना चाहिए, पौष्टिक तत्व तो लेना चाहिए, उसकी जगह ज्यादातर क्या होता है, हम फास्ट फूड इंटेक बहुत ज्यादा करने लगे हैं। जब आप फास्ट फूड इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं तो आपके शरीर में ऑटोमेटिकली मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो की मूलभूत तत्व होते हैं जिससे हमारा शरीर बनता है, तो उनकी अपने आप में कमी आ जाती है। जब कमी आती है तो ऑटोमेटिकली, चाहे वो कोई लड़की हो या महिला हो, तो उसके शरीर में हार्मोन्स का बदलाव आने लगता है। जब हार्मोन्स का बदलाव आता है तो उसके मेंसेस इररेगुलर हो जाते हैं। जब मेंसेस इररेगुलर होते हैं तो ऑटोमेटिकली आगे जाके एक बड़ी समस्या बन सकती है उन्हें रसौली या अन्य प्रकार की समस्याएं हो सकती है, रसौली, कैंसर, ये सब कुछ हो सकता है। तो जरूरी है कि हम अपने खाने पीने पर भी ध्यान दें और हम क्या खा रहे हैं ये हम सबको सोचना पड़ता है। अगर आप डेली का फास्ट फूड इंटेक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान आपको हर प्रकार से होगा। आपका वजन भी बढ़ सकता है या वजन अत्यधिक कम भी हो सकता है, हार्मोन डिस्टर्ब हो सकते हैं और दूसरी समस्या हो सकती है। तो बेटर आप बैलेंस वे में हर चीज को लें। दूसरी चीज होती है, बहुत बार हमें साथ के साथ इलाज की भी आवश्यकता होती है तो उसको भी फॉलो करें। तीसरी चीज, हमें स्ट्रिक्ट होना है अगर हम मदर हैं, जैसा कि आप और हम सभी को पता है, तो एज अ मदर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। क्योंकि मेरा मानना होता है महिलाओं को तो जो समस्या हो ही रही है आज के समय में, लेकिन महिलाओं से ज्यादा बच्चियों को, लड़कियों को समस्याएं हो रही है और हर प्रकार की बीमारी लड़कियों में हो रही है। तो एज अ मदर हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये देखें कि हमारी बेटी क्या खा रही है क्या नहीं खा रही है, सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चों का शौक पूरा करना है लेकिन डाइट का भी हमें ध्यान रखना चाहिए।
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैम, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: संदेश तो वही है कि अगर आपको लगता है कि हेल्थ से संबंधित आपको कोई भी समस्या हो रही है तो आप डॉक्टर को दिखाने आए, उसको अनदेखा ना करें, स्पेशली महिलाओं के लिए। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें बीमारी एक दो साल में नहीं, 10-10, 12-12 साल पुरानी बीमारियां होती हैं। तो 10-12 साल का मतलब है कि कहीं ना कहीं महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर हमेशा अनदेखा करती हैं। तो जब आप 10-12 साल पुराना रोग लेकर आते हैं तो उसको ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है और दूसरा रोग भी खतरनाक हो जाता है। तो अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमारी खुद की स्वयं की होती है। तो जरूरी है कि अगर ऐसा लगे, जैसा भी हम लोगों ने बोला, बहुत सारे ऐसे लक्षण डिस्कस किए जो रसौली की पहचान हो सकती है, क्योंकि रसौली बहुत सामान्य हो चुकी है आज के समय में, तो उसको तुरंत इलाज कराएं। घबराने की जरूरत नहीं है, आप सावधानी तो लेते ही हैं, लेकिन अगर सावधानी के बावजूद भी बीमारी हो जाती है तो उसका इलाज भी कराना उतना ही ज्यादा जरूरी है। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे श्रोताओं को रसौली से संबंधित विस्तृत जानकारी देने के लिए। हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को काफी सारी जानकारी आज के इस साक्षात्कार से मिली होगी और आगे भी हम अच्छे अच्छे विषय पर आपसे बात करेंगे और श्रोताओं को जानकारी देते रहेंगे।
1: बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में की गई बातचीत डॉक्टर सुजाता संजय से।
3: बातचीत की मनीषा नेगी ने, विषय था रसोली। रिकॉर्डिंग 90.8 मेगाहर्ट्ज़ मंदाकिनी की आवाज में की गई थी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
4: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। आइए आज मैं आपको एक कविता सुनाता हूं जिसको लिखा है सरस्वती कौल बट जी ने, जो पंचकुला में रहती हैं। कश्मीरी पंडितों को अपने वतन से बेघर हुए अब लगभग 33 वर्ष हो चुके हैं, यानी 3 दशक से ऊपर। बच्चे जवान हो गए, जवान बुजुर्ग और बुजुर्गवार या तो हैं या फिर त्राही त्राही करते सिधार गए। कैसे दुखद त्रासद स्थिति है कि नई पीढ़ी के किशोर युवाओं को ये नहीं मालूम कि उनका जन्म कहां हुआ, उनकी मातृभूमि कौन सी है। बाप दादाओं से उन्हें जरूर सुना होगा कि मूलतः वे कश्मीरी पंडित थे, मगर 1990 में वे बेघर हुए थे। एक चीज तो सत्य है, कश्मीर से हम सबको निकाला गया है, पर हमारे भीतर कश्मीर को कोई भी नहीं निकाल सकता। इसी संदर्भ में हमारी बहन सरस्वती कौल बट जी ने यह कविता लिखी है। आइए मैं आपको ये कविता सुनाता हूं। कविता का शीर्षक है कब तक। चंद सांसें लेना कठिन है, चंद सांसें लेना कठिन है, इंसानियत भी शर्मसार है। वीरान चमन और शुष्क है भावना, मौन खड़े हैं पर्वत, नदियां शिथिल है, देख रहा है चुपचाप विस्तृत आकाश, थम सी गई है वितस्ता। शंकर आचार्य और कलहन की धरा आज रक्त रंजित है, सब और नरबक्षी मंडरा रहे हैं, हर कोना है बहुत ही डरावना। न जाने कब किसकी बारी है, जिंदगी यहां मौत से हारी है, मौत का तांडव जिद पर अड़ा है, हर मोड़ पर राक्षस खड़ा है, चीथड़ों में लिपटी लाशें चीख रही है, किसी की मां किसी का भाई किसी का बाप पति किसी का, मौत की बेंट चढ़ा है। कश्यप तेरी धरती पर इतना चीतकार, भगवान तुमने ही तो ये सृष्टि बनाई, हे ईश्वर तू कर कोई उपकार, रोक दे ये घातक नरसंहार, रोक दे ये घातक नरसंहार। ये कविता लिखी है बहन सरस्वती कौल भट्ट जी ने, और ये कविता खुद ही उस दर्द को बयां करती है जो हम जागते सोते अपने आसपास ही महसूस करते हैं। ये 33 वर्ष भी अब 33 दिन से ज्यादा नहीं लगते, ऐसा लगता है कि कल ही हमने अपने घर को छोड़ा है। प्रभु करे किसी का घर ना छूटे, आखिर घर तो घर है। मैं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

वितस्ता रेडियो आपकी जिंदगी की रवानी। वितस्ता रेडियो आपकी जिंदगी की रवानी।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं। FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता पर हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें।
2: www.sdcollegeambala.ac.in

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। लघु कथाओं की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं एक और नई लघु कथा। शीर्षक आप बताइए, ढकोसला कहें या नाटकीय प्यार, ये इच्छा आपकी है। और इस नाटकीय प्यार या ढकोसले की रचना की है अरविंद वर्मा ने। सुनाता हूँ अरविंद वर्मा की लिखी हुई ये रचना नाटकीय प्यार। मैंने सुना है एक रात ऐसा हुआ कि एक पति घर वापस लौटा अपने काम से, थका मांदा यात्रा से आया था, प्यासा था, थका हुआ था, आकर बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि पानी ले आ, मुझे बड़ी प्यास लगी है। पत्नी पानी लेकर आई, लेकिन वो इतना थका था ना कि लेटते ही उसको नींद लग गई। पत्नी रात भर पानी का गिलास लिए खड़ी रही बिस्तर के पास, क्योंकि उठाए तो ठीक नहीं है नींद टूटेगी, खुद सो जाए तो भी ठीक नहीं है, जाने कब नींद टूटे और पानी की जरूरत पड़ जाए पीने के लिए। उसका पति प्यासा सो गया है ना, इसलिए वो रात भर गिलास लिए खड़ी रही। सुबह पति की आंख खुली, उसने कहा अरे पागल तू सो गई होती। उसने कहा ये संभव नहीं था, तुम्हें प्यास थी, तुम कभी भी उठ सकते थे, तो तू मुझे उठा लेती। उसने कहा वो भी मुझसे ना हो सकता, क्योंकि तुम थके हुए थे और तुम्हें नींद भी आ गई थी, तो ये उचित था कि तुम सोए रहो, मैं गिलास लिए खड़ी रहूं, जब नींद खुलेगी तो पानी दे दूंगी और पी लोगे, नहीं खुलेगी तो कोई हर्जा नहीं, एक रात जागने से कुछ बिगड़ थोड़ा ही जाता है। ये बात पूरे गांव में फैल गई, जो वहां का सम्राट था ना उस तक भी खबर पहुंच गई। उसने उसकी पत्नी को बुलवाया और कहा कि प्रेम की ऐसी धारा मेरी राजधानी में बहती है और मुझे पता ही नहीं, मुझे प्रेम की इस धारा का सम्मान करना होगा। मैं अभी जिंदा हूं, मेरा फर्ज बनता है कि यदि मेरी प्रजा हमारी संस्कृति में प्राण जीवित रख रही है ना, तो मुझे उसको सम्मानित करना होगा। और सम्राट ने बहुत से हीरे जवाहरातों से उसका स्वागत किया, उसको बहुत सारा धन दौलत हीरे जवाहरात देकर भेज दिया। अब क्या होता है साहब कि पड़ोस की एक महिला इसी बात से बहुत ईर्ष्या करने लगी, जलन हो रही थी उसको, ये कोई खास बात थोड़ी है, एक रात गिलास हाथ में लिए खड़ी रही, उसके लिए सम्राट ने उसको लाखों रुपए के हीरे जवाहरात और पैसे दे दिए, ये भी कोई बात है। उसने अपने पति से कहा कि देखो जी आज तुम थके होकर ना घर लौटना, आते ही बिस्तर पर बैठ जाना और पानी मांगना, मैं पानी लेकर आऊंगी, लेकिन तुम आंखें बंद करके सो जाना और मैं खड़ी रहूंगी रात भर, और सुबह जब तुम्हारी आंख खुले ना तुम ऐसे ऐसे ही वचन कहना जैसे उसके घर वाले ने कहे थे कि तू रात भर क्यों खड़ी रही, तू उठा लेती मेरे को। मैं कहूंगी कैसे उठा सकती थी, तुम तो थके मांदे थे, तो तुम कहना तू सो जाती, तो मैं कहूंगी कैसे सो जाती, तुम्हें प्यास लगी थी और इतनी जोर से ये बात कहना कि पड़ोस के लोगों को भी पता लग जाए, और क्योंकि ये तो हद हो गई जरा रात भर, और किसको पता कि खड़ी भी थी भी को नहीं खड़ी थी, क्योंकि रात ही सोली हो इसकी झपकी ले लियो तूने, फिर से उठकर खड़ी हो गई हो। ये बात फैला दी सारे गांव के बीच में, लेकिन फिर भी जो भी है, लेकिन हमें भी तो सम्राट से पुरस्कार लेना है। पति थका मांदा वापस लौटा, लौटना पड़ा भाई, जब पति कहे कि थके मांदे हो तो लौटो, लौटना पड़ा, आते ही बिस्तर पर बैठा, कहा प्यास लगी है, पत्नी पानी लेकर आई, पति आंख बंद करके लेट गया, कोई नींद तो आई नहीं, लेकिन मजबूरी है, जो पत्नी कहती है तो मानना पड़ेगा, और फिर लाखों करोड़ों के हीरे जवाहरात का भी तो सवाल है। अब पत्नी ने सोचा कि बाकी का दृश्य तो सुबह ही होने वाला है, अब रात तो बेकार खड़े रहने से कोई फायदा है नहीं, किसको पता चलता है ये खड़े भी रहे या नहीं खड़े रहे। वो भी सो गई,
गिलास विलास एक तरफ रखकर। सुबह उठकर उसने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया कि पड़ोसियों को पता लग जाए, और पड़ोसियों ने सुना भी। पड़ोसियों ने क्या, पूरे गली मोहल्ले ने सुना, और ये बात सम्राट के कान तक भी पहुंच गई, और सम्राट के द्वार से उसको भी बुलावा आया, बड़ी प्रसन्न हुई। लेकिन जब दरबार में पहुंची ना तो बड़ी हैरान हुई। सम्राट ने कहा, ये जो दो कोड़े लेकर आदमी खड़े, इनको ले आओ, इस औरत के ऊपर बरसाओ कोड़े। जब कोड़े बरसने लगे वो चिल्लाई, ये क्या न्याय है, एक को हीरे जवाहरात और मुझे कोड़े, अरे किया तो मैंने भी वही है जो उसने किया था। सम्राट ने कहा, किया है तूने लेकिन हुआ नहीं है, और होने का मूल्य है, करने का मूल्य नहीं है। जीवन में हर रोज होता है, अगर हृदय में स्पंदन ना हो रहा हो ना, तुम कर सकते हो लेकिन उसे करने से फायदा क्या, लाभ क्या है। सारे मंदिर मस्जिद गिरजे गुरुद्वारे कर रहे हैं, धर्म क्रियाकांड है, हो नहीं रहा है, गीता पढ़ी जा रही है, की जा रही है, लेकिन हो नहीं रही है। तुमने सुन लिया कि गीता को पढ़ने वाले पाप से मुक्त हो गए, मोक्ष को उपलब्ध हो गए, तुमने सोचा हम भी हो जाएं, तुमने भी पढ़ ली, लेकिन तुम्हारा पढ़ना उस दूसरी पत्नी जैसा है, तुम परमात्मा को धोखा नहीं दे पाओगे। साधारण सम्राट को धोखा नहीं दे पाए तो वो जब समझ गया कि ऐसी घटनाएं रोज नहीं घटती हैं, और पड़ोस में घट गई, वही घटी, बिल्कुल वैसी ही घटी, ये तो कोई नाटक हो, ये प्यार नहीं है, ये नाटकीय प्यार है, दिखावा है। हर वक्त ने परमात्मा की प्रार्थना अपने ढंग से की है, किसी और के ढंग से नहीं। हर प्रेमी ने प्रेम अपने ढंग से किया है, कोई मजनू और शीरी और फरियाद उनकी किताब रखकर और पन्ने पढ़कर और कंठस्थ करके कभी प्रेम होता है क्या? ये जीवन कोई नाटक नहीं है, पीछे बैठा कोई आदमी कुछ कहता जाए और आप उसको बोलते जाओ, ये जीवन है, ये जीवन है। अरे भाई ऐसा करोगे ना तो खराब कर लोगे अपने जीवन को। तुम हजार बार गीता पढ़ लो, जैसे अर्जुन ने पूछा था ना, अगर वैसी जिज्ञासा नहीं होगी ना, वैसे दिल से आवाज नहीं आएगी ना, तो जो कृष्ण को सरल हुआ कहना, जो अर्जुन को संभव हुआ समझना, वो तुम्हारे साथ नहीं घट सकता, दोहराया नहीं जा सकता, कुछ भी जगत में दोहराया नहीं जा सकता। प्रत्येक घटना अपने आप में अनूठी है, कितना ही सिर पटक लो और कहो कि मैंने भी तो वैसे ही किया, मैंने भी तो ठीक वैसे ही पालन किया था नियम का, फिर अन्याय क्यों हो रहा है? अक्षरक्ष पालन का सवाल ही नहीं है। अपने ईश्वर को अपने तरीके से भजो, जब अपने तरीके से दिल से भजोगे ना तो राजा की भांति वो भी आपको उचित सम्मान देगा। नाटक करोगे, ड्रामा करोगे, दिखावा करोगे तो दंड ही तो पाओगे ना। तो अपने नाटकीय प्यार को अगर इस तरह से निभाओगे तो निश्चित रूप से दंड मिलेगा ही मिलेगा। जब दंड मिलेगा ना, दोष ईश्वर को दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मन के मुताबिक नहीं होता ना, तो टूट जाता है दिल, और जब दिल टूट जाता है फिर ईश्वर को दोष देते हुए पता क्या कहते हैं,

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: تہو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ودستہ ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنین پسندید بات

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर

0: उनकी वाणी में भक्ति, दर्शन और मानवीय संवेदना का अद्भुत संगम मिलता है। ललेश्वरी ने समाज को बताया कि ईश्वर मन के भीतर है, बाहरी अडंबरों में नहीं। शिव योनि का अर्थ है शिव की सृजनात्मक ऊर्जा, अर्थात वह दिव्य स्रोत जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कश्मीर शिव दर्शन में शिव योनि को सृजन, चेतना और शक्ति का प्रतीक माना गया है। ललेश्वरी की वाणी में शिव योनि का उल्लेख आत्मबोध और परम चेतना की अवस्था को समझाने के लिए आता है। ललवाख शब्द का अर्थ है लल यानी ललेश्वरी, के वाक यानी वचन या दोहे। ये छोटे छोटे दोहे या सूक्तियां हैं जिनमें उन्होंने साधना, आत्मज्ञान, प्रेम और सच्चे ईश्वर की अनुभूति को सरल भाषा में व्यक्त किया है। ये वाक आज भी कश्मीर की आत्मा की आवाज माने जाते हैं। हमने ललेश्वरी के ललवाक को हिंदी और कश्मीरी में तैयार कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम मानते हैं कि ये ललवाक हमारी जीवन का रास्ता आसान कर देती है। इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने और आवाज दी है श्रीमती नीरजा पंडित ने। इनको तैयार किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अशोक पंडित ने। तो आइए सुनते हैं ललवाक की ये श्रृंखला।
1: नमस्कार, आज का जो ललवाक है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंसाइट से भरा हुआ ललवाक है ललित का, और हमारे आज के इस जीवन के दृष्टिकोण में इसकी बड़ी महत्वता है। कश्मीरी में ये ललवाक बोलता हूँ, नावद बरस अटगंड ड्योलगो, नावद बरस अटगंड ड्योलगो, देह कान हुलगो, हाय क्या कहो, गौरसुंद वनुन रावण त्योल प्यों, गौरसुंद वनुन रावण त्योल प्यों, फल रस खोल गो, हाय क्या कहो। अब ये देखिए, इसमें नावद बरस अटगंड ड्योलगो की बात करती है। नावद मतलब कश्मीरी में जैसे मिठाई कहते हैं, मीठा कहते हैं, मिश्री कहते हैं, तो ललदेत मिश्री को का एक मेटाफर यूज करती है। वो कहती है कि जो दुनिया की इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, ये दुनिया की इच्छाएं आकांक्षाएं सुख जिसका हम भोग करना चाहते हैं मिठाई के समान है, और ये मिठाई की लालसा हम सबको होती है, क्योंकि मीठे की एक बार आदत लग जाए तो आदमी का मन हमेशा अतृप्त रहता है और मीठा चाहता है, क्योंकि पहले ये मीठा बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे ये मीठा और आना शुरू कर देता है तो ये जीवन में एक बोझ के समान हो जाता है। हमें पता भी नहीं लगता कि ये बोझ कब बन चुका होता है, क्योंकि लालसा ने हमारी आंखें अंधी कर दी होती है, हमें दिखता ही नहीं। हम हर चीज चाहते हैं, ये भी मुझे मिले, ये भी मुझे मिले, एक चीज मिल जाती है तो दूसरी चीज मिलनी चाहिए। तो ललदेत इन आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को, इन इच्छाओं को इस मिठास से जोड़ती है। वो कहती है कि ये जो इच्छाएं हैं ये बड़ी बड़ा बोझ क्रिएट कर देती है हमारे ऊपर, और फिर कहती है कि देह कान होल गोम भाई क्या कि हो, मतलब फिर ये बोझा इतना भारी हो जाता है हम पर कि जो मेरा व्यक्तित्व है, जो मेरा अस्तित्व है, जो मेरी इंडिविजुअलिटी है, जिस चीज के लिए मैं इस जीवन में आया हूं, वो चीज मुड़ना शुरू हो जाती है, वो चीज उस भार के नीचे दब जाती है, टेढ़ी हो जाती है। और फिर कहती है गौरसुंद वनुन रावण त्योल प्यों, गुरु ने मुझे कुछ ऐसा कहा कि तो उस दिशा की ओर चल, उस परमात्मा को खोजने चल। मुझे वो दिशा अच्छी तो लगी, लेकिन उसको करने के लिए मुझे इस दुनिया से अपने आप को खींचना है बाहर। अब दुनिया से अपने आप को खींचना बाहर किसी को अच्छा नहीं लगता, वो बड़ा तकलीफ देह है, ये सबके लिए बड़ा बड़ा कष्टकारी होता है। तो इसलिए फिर कहती है फल रोस क्यों गोम हाई क्या की हो, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब मैं इस दिशा में जाऊं या मैं इस दिशा में रहूं, मैं छोड़ू या पकड़े रखूं। तो ये बड़ी पेनफुल स्टेट होती है, लेकिन यही पेनफुल स्टेट अगर वास्तविकता आप देखें, यही ट्रांसफॉर्मेशन का शुरुआत है। अगर जीवन में आप इस स्टेज को क्रॉस कर गए तो आप समझिए आप उस शिव को प्राप्त हो गए।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: You're enjoying 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
3: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, हम सफर जिंदगी का।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

फिल्मी गीतों पर मबनी प्रोग्राम पेश है। मुझे तू दर्द दे ऐसा जो तुझे भी मिल गया हो, मुझे तू फूल दे ऐसा जो मुरझा के खिल गया हो, मुझे तू दिल भी दे ऐसा जो अब तक सिल गया हो। मैं हूं रमेश।

एक सन्नाटा है जो मेरी उम्र के सिमटे हुए पलों की रहनुमाई करता है। तुम्ही ने तो सिखाया है चिराग बुझाने का तरीका भी। तुमने ये भी कहा था कि खुदा भी अंधेरों में सफर करते हैं, इसलिए एक सन्नाटा रखा है मैंने अपने आसपास।

अभी तक मुझको वो कहां भूले हैं। हम तो झूले हैं कितनी बहारों में, चिनारों में, सितारों में, जब कभी सफर होता था हमारा, और अपनी अपनी पसंद का तोड़ लेते थे सितारा। अभी तक गुलाबों के पत्ते हैं किताबों में, एक राज की तरह है तू मेरे हमराजों में।

0: कहां गई वो रातें, प्यार भरे नगमे, मासूमियत की बातें। सब कुछ बदल बदल सा गया है, मगर मेरा तस्वुर, मेरे ख्यालात, मेरे जज्बात खामोश तनहा ठहराव लिए। इन फिजाओं में तेरा मेरी राहों का तकना फिर से मजबूर करता है जीने को। आखिर क्यों? इसलिए शायद कि हम और गम के तूफान में बह जाएं और तड़पें, गुट गुट कर दम तोड़ दे।
1: बेवफा तुझको

की एक फासला है, किनारे से किनारे तक, नजर से नजर तक, सांस से सांस तक। एक सफर है आवाज से आवाज तक, खाक से खाक तक, मौत से मौत तक। ए दोस्त, ये फासले, ये शर्तें, ये सफर रहने दो।

तेरा, मगर तूफान में चिराग रोशन कैसे हो? अंधेरों से रोशनी की उम्मीद, आखिर जिंदगी का हासिल क्या है? कुछ भी तो नहीं दे पाऊंगा तुम्हें, इसलिए तू

झूठी है ये दो पल का जीवन, इसमें बिछड़ना एक हकीकत है, मिलना तो सिर्फ बहाना है। अंधेरे से मायूस ना हो, ये सफर है सूरज का, जिसमें ढल जाना एक हकीकत है, चढ़ना तो सिर्फ बहाना है।

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा? अब चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्ते।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: पेश है कार्यक्रम सुनहरे पल। आज का कार्यक्रम गायक महेंद्र कपूर पर आधारित है। पेश करेंगी RJ किरणी।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनहरे पल और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी। आज का एक खास प्रोग्राम हमारे सबके प्रिय सिंगर महेंद्र कपूर जी को समर्पित है। महेंद्र कपूर जी ने अपनी सुरीली आवाज से हमें कई यादगार गाने दिए हैं, जो आज भी हमारे दिलों में बसते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महेंद्र कपूर के गानों का ये सफर।

महेंद्र कपूर का जन्म 9 जनवरी 1934 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। गायकी के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए उन्होंने जल्द ही अमृतसर से मुंबई का रुख लिया। बचपन से ही महेंद्र कपूर महान गायक मोहम्मद रफी से बहुत प्रभावित थे। वे एक तरह से मोहम्मद रफी के शागिर्द थे और उनके प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी। शायद यही वजह है कि कई बार उनके गानों में, खासकर शुरुआती दौर के उनके गानों में, रफी के प्रभाव की साफ झलक मिलती है। उनकी दिली इच्छा थी कि वे हिंदी फिल्मों में गाएं। शुरुआत में महेंद्र कपूर ने शास्त्रीय संगीत की तालीम प्राप्त की थी। उनके जीवन में प्रमुख मोड़ उस समय आया जब उन्होंने मेट्रो मर्फी ऑल इंडिया गायन प्रतियोगिता जीत ली। 1957 में हुई इस प्रतियोगिता के जज संगीतकार नौशाद अली थे, जिन्होंने फिल्म सोहनी महिवाल के गीत चांद छुपा है और तारे डूबे को महेंद्र कपूर की आवाज में रिकॉर्ड किया। इसके बाद उनको वी शांताराम की फिल्म नवरंग में गाने का मौका मिला। इस फिल्म में उन्होंने आधा है चंद्रमा रात आदि गीत गाया, जो कि कामयाब रहा। सी रामाचंद्रन के संगीत से सजे इस गीत ने महेंद्र कपूर के पांव फिल्म जगत में मजबूती से जमा दिए।

महेंद्र कपूर अपने स्कूल के दिनों से ही रफी साहब के साथ थे। उस समय रफी साहब इंडस्ट्री में सबसे बड़े नामों में से एक थे। रफी साहब और महेंद्र कपूर के बीच रिश्ता कितना गहरा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो मोहम्मद रफी की कहीं किसी भी बात को मानने से कभी पीछे नहीं हटते थे। एक बार रफी साहब ने महेंद्र कपूर से कहा था कि हम दोनों साथ में गाने नहीं गाएंगे क्योंकि हमारी आवाज मिलती है। उस दिन से ही दोनों ने कभी साथ गाना नहीं गाया। दोनों ने सिर्फ 1968 में आई फिल्म आदमी का गीत कैसी हसीन आज बहारों की रात है, इस गाने में दिग्गज संगीतकार नौशाद साहब के कहने पर महेंद्र कपूर ने तलत महमूद साहब की आवाज को डब किया था। ये गाना पहले रफी साहब और तलत महमूद को गाना था, लेकिन किसी वजह से गाने में तलत महमूद वाले हिस्से को नए गायक के साथ डब करना पड़ा और इस तरह फिल्म इंडस्ट्री रफी साहब और महेंद्र कपूर ने साथ में अपना पहला और एकमात्र गाना गाया। दोनों के बीच हुए इस पूरे किस्से का खुलासा महेंद्र कपूर के बेटे रोहन कपूर ने किया था।

इसके बाद उन्होंने भारत कुमार के नाम से मशहूर मनोज कुमार और बी आर चोपड़ा के बैनर तले बनी अधिकतर फिल्मों के गीतों के लिए भी आवाज दी। एक समय महेंद्र कपूर की आवाज भारत की जीवंत आवाज कहलाती थी। देशभक्ति गीतों का ख्याल आते ही सबसे पहला नाम उनका ही आता था। लेकिन चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए और किसी पत्थर की मूरत से गाने के उनके गानों में विविधता प्रदर्शित हुई। इसके अलावा वो पहले भारतीय गायक थे जिन्होंने कई अंग्रेजी गाने रिकॉर्ड किए। यही नहीं, महेंद्र कपूर ने लगभग सभी भाषाओं में 25,000 से भी अधिक गाने गाए। कई गीत जो उन्होंने गाए वो सदाबहार हो गए। उनके गानों की दीवानगी ऐसी कि देश ही नहीं विदेशों में भी लोग उनके गीतों के कायल थे। जिस फिल्म इंडस्ट्री में रफी, किशोर और मुकेश जैसे बड़े नाम थे, वहाँ खुद की एक अलग पहचान बनाना शायद महेंद्र कपूर ही कर सकते थे। महेंद्र यूं तो रफी का अपना गुरु मानते थे, लेकिन रफी के कहने पर उन्होंने शास्त्रीय संगीत की सीख ली और उसे बखूबी अपने गीतों में उतारा भी।

70 के दशक में महेंद्र कपूर बेहद लोकप्रिय थे। मनोज कुमार के लिए उनके गाए देशभक्ति गीत आज भी लोगों के दिलों में बेहद करीब है। प्रीत जहां की रीत सदा हो या मेरे देश की धरती, इन गानों ने देशभक्ति की भावना की जो नींव रखी वो आज भी कायम है। आज भी हर भारतीय जब इन गानों को सुनता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा उमड़ आता है। महेंद्र कपूर को मनोज कुमार की आवाज भी कहा जाता है। मनोज कुमार ने खुद को जब दर्शकों के सामने राष्ट्रवादी नायक की भूमिका में पेश किया तो उनके इस छवि को पुख्ता करने का काम किया महेंद्र कपूर की आवाज ने। महेंद्र कपूर को 1968 में उपकार फिल्म के सदाबहार गीत मेरे देश की धरती सोना उगले के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। वैसे तो महेंद्र कपूर के जुड़े कई किस्से हैं, लेकिन उनके कुछ किस्से बेहद मशहूर हैं।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। प्रोग्राम सुनहरे पल जारी है। महेंद्र कपूर को हर मूड का गीत गाने वाला समझा जाता था। वो किसी भी तरह के गीत को बेहद ही सरलता और गंभीरता के साथ निभाते थे, चाहे वो देश में सबसे ज्यादा बजने वाला देशभक्ति गीत हो, या धर्म अधर्म की सीख देते महाभारत के गीत, या फिर प्यार में डूबे किसी प्रेमी के दिल की आवाज, या जिंदगी की कश्मकश में धीरे किसी शख्स के दिल की आह। हर गीत को हर तरीके गाने की कला था महेंद्र कपूर के पास। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गीतों में आज भी वो जादू है कि उन्हें सुनते ही हर कोई उनकी आवाज को खुद की समझ गीत गुनगुनाने लगता है।

हमेशा मस्त नगमे सुनाने का वादा करने वाले महेंद्र कपूर अगले कई दशक तक संगीत प्रेमियों को अपनी आवाज से मोहित करते रहे। उन्होंने जब फिल्मी जगत में पदार्पण किया वह हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्ण काल था और पार्श्व गायकी में मोहम्मद रफी, मुकेश कुमार और हेमंत कुमार को टक्कर दी और उनके बीच राह बनाना कोई आसान नहीं था। ये एक कठिन चुनौती थी, लेकिन धुन के पक्के और पुरुषार्थ से बड़े कपूर ने न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई बल्कि पार्श्व गायन की विविधता को नए आयाम भी प्रदान किए।

बी आर चोपड़ा से उनका साथ टीवी धारावाहिक महाभारत में भी रहा। धारावाहिक महाभारत के शीर्षक गीत को महेंद्र कपूर ने ही स्वर दिया था। धारावाहिक के प्रारंभ से ही महेंद्र कपूर की आवाज से सजे श्लोक आदि दर्शकों को टीवी के सामने बांधे रखने में बहुत सफल हुए। महेंद्र कपूर ने दादा कोंडके के लिए उनकी अधिकतर मराठी फिल्मों में भी गीत गाए। उन्होंने सी रामचंद्रन और पी नायर, कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे विभिन्न संगीतकारों के साथ काम किया, लेकिन उनकी विशेष जोड़ी रवि के साथ बनी। उन्होंने रवि के साथ मिलकर कई हिट गीत दिए। इन गीतों में चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए, नीले गगन के तले, तुम अगर साथ देने का वादा करो और किसी पत्थर की मूरत से आदि गीत शामिल हैं।

अपने लंबे कैरियर में महेंद्र कपूर ने कई पुरस्कार प्राप्त किए। सन 1968 में उपकार फिल्म के गीत मेरे देश की धरती के लिए महेंद्र कपूर को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त 1964, 1968 और 1975 में उनको फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र की सरकार ने उन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया। देश विदेश में उन्होंने अनेक चैरिटी शो किए। सुनील दत्त और नरगिस के साथ सीमा पर तैनात फौजी जवानों के लिए उन्होंने कार्यक्रम दिए। भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री प्रदान करके इस गायक का मान बढ़ाया। 27 सितंबर 2008 को 74 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से महेंद्र कपूर का निधन हो गया, लेकिन आज भी उनके सदाबहार नगमों कानों में मिश्री गोलते हैं। आज भले ही महेंद्र कपूर हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे एक ऐसी विरासत छोड़कर गए हैं जहां उनकी आवाज का जादू हमेशा बना रहेगा।

ये था आज का सफर महेंद्र कपूर के साथ। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अगले किसी कार्यक्रम में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 4। आज का कार्यक्रम आधारित था गायक महेंद्र कपूर पर। प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने। रिकॉर्ड एडिट निर्देशन भारत सुपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता की पेशकश।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य गोष्ठी। स्टूडियो में आमंत्रित हैं कवित्री श्रीमती रिद्धम डडियाला, उनसे बात करेंगे भारत सपोरी।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सपोरी लेके आया हूँ काव्य गोष्ठी कार्यक्रम का एक नया अंक। हमारे प्रदेश और अंबाला के कवि कवित्री आज देश विदेश में अपना लोहा मनवा रहे हैं। अपनी कविताओं के मधुर शब्दों से वो सब बता देते हैं जो हमारी जिंदगी के साथ जुड़ा है। आज ऐसे ही मेहमान और एक कवित्री हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं। उनसे आपको रूबरू करने से पहले ये बताना जरूरी समझता हूं कि गत 30 जुलाई 2023 को उनकी पहली कविता संग्रह अनकहे एहसास का विमोचन हुआ अंबाला की एक सांस्कृतिक संस्था कला शिल्पी द्वारा। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती है उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती है कदरदानों की। करते हैं स्वागत आज की शख्सियत कवित्री श्रीमती रिद्धम डडियाला जी का। आपका स्वागत और अभिनंदन FM 90.0 MHz के स्टूडियो में।
5: बहुत शुक्रिया आपका।
4: आप अपने जीवन के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए, जन्म कहाँ हुआ और शायरी की ओर कब से आप रागिब हुए?
5: जी, तो मेरा जन्म हुआ शाहबाद मारकंडा में, हरियाणा, विच इज कॉल्ड लैंड ऑफ प्लेंटिफुल ग्रेन्स। बचपन से ही मैं अपने फादर से काफी इंस्पायर्ड रही हूँ। मैंने अपनी पहली कविता आई थिंक 10 साल की उम्र में लिखी होगी। तब से ये था कि दिमाग में जो भी इमोशन आए, एहसास आए, जो आप नहीं कह पाओ, वो लिखने के माध्यम से एक्सप्रेस करती थी। तो आई स्टार्टेड राइटिंग एट द एज ऑफ 10 आई थिंक। मेरी एजुकेशन विश्वास स्कूल शाहबाद मारकंडा में 10th तक हुई, फिर मैं चंडीगढ़ चली गई। 11th 12th BCOM ऑनर्स, MCOM सब मैंने चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। मेरे करियर की शुरुआत SD कॉलेज अंबाला कैंट से ही हुई। आई वर्क देयर एज अ लेक्चरर फॉर 2 years। उसके बाद शादी दिल्ली में हुई, वहाँ MIT यूनिवर्सिटी में मैंने 3-4 साल काम किया। करंटली आई एम वर्किंग एंड स्टेइंग इन दुबई, वहाँ पे मैं DPS स्कूल में हाई स्कूल टीचर हूँ। और शायरी का शौक बहुत ज्यादा है, तो इट्स कंटिन्यूइंग विद मी एज आई एम ग्रोइंग, इट इज ग्रोइंग।
4: हमारे श्रोता इस समय ये जान रहे हैं कि जब हम जिंदगी का सफर शुरू करते हैं तो बहुत सारे मरहलों को हम क्रॉस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपने जैसे कहा कि आप ने पंजाब अंबाला, अब आप दुबई में रह रहे हैं, तो जो ये सफर है हमारी जिंदगी का, क्या एक अनुभव मिलता है हमें जब हम हर दिन कुछ नया देखते हैं?
5: आई एम श्योर, आई थिंक हम हर समय कुछ ना कुछ सीखते हैं, और सीखने की ना कोई उम्र है, ना कोई टाइम है, ना कोई जगह है। बी इट चंडीगढ़ या अंबाला या दिल्ली या फिर दुबई, हर स्टेज पे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, पर्सनल लेवल पे भी और प्रोफेशनल लेवल पे भी। इनफैक्ट कहने को हम पढ़ाते हैं बच्चों को, बट रोजमर्रा की जिंदगी में हम बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो यस, इट हैज बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल दीज इयर्स। मैंने पर्सनली बहुत सीखा, बहुत लर्न किया, बहुत ग्रो किया मेंटली, इमोशनली, इन एवरी वे। हाँ जी, तो आप सही कह रहे हैं कि हम इट इज अ लर्निंग जर्नी।
4: और कवि या कवित्री के लिए ये जो सफर है ये कितना अहम और जरूरी है?
5: पर्सनली ये जैसे आपने बताया काव्य संग्रह, दिस इज बेसिकली रिफ्लेक्शन, ये मेरी जर्नी की ही रिफ्लेक्शन है। ये पूरी जिंदगी में जो जो मैंने सीखा है, जो जो उतार चढ़ाव देखे हैं, जो जो इमोशंस मैंने जिए हैं, तो ये मैंने कविता के रूप में ही एक्सप्रेस किए हैं। तो पर्सनली आई फील कि किसी भी पोएट या पोएटिस के लिए ये इमोशंस बहुत ज़रूरी हैं ताकि वो इनको शब्द के रूप में एक्सप्रेस कर सकें।
4: बहुत सही कहा आपने। आपका जो नाम है रिदम है, रिदम का मतलब लय होता है जो संगीत के साथ जुड़ा है, क्या शायरी में भी लय होना जरूरी है?
5: आई थिंक जिंदगी में हर चीज़ में लय होना ज़रूरी है, ताल होना ज़रूरी है, चाहे वो घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे शायरी। शायरी में तो ताल या लय का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है दैट ऑल्सो इज रिदमिक पोइट्री, बिकॉज मेरी हर उसमें आप देखेंगी कि ताल है। कहीं कोई भी चीज़ बेताली होगी तो हम जिंदगी जी नहीं पाएंगे या उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। तो आई थिंक यस, हर चीज़ में लय ताल की बहुत जरूरत है।
4: हमारा जो ये कार्यक्रम है ये काव्य गोष्ठी कार्यक्रम है, तो अब हम कविता की ओर आते हैं। आपकी पहली कविता संग्रह से कौन सी कविता का पाठ हमारे श्रोताओं के लिए आप आज सबसे पहले करना चाहेंगे?
5: तो मेरी ये कविता जो मुझे बहुत पसंद है ये औरत पे डेडिकेटेड है
4: जी।
5: तो मैं ये कविता सुनाना चाहूंगी। ये औरत है, कभी लक्ष्मी कभी दुर्गा कभी चंडी बन जाती है, ये औरत है यारों कमाल कर जाती है। टूटे दिल के टुकड़ों को जोड़ कर रखे जो, ख्वाहिशों के बिखरे मोती संजो के रखे जो, अपने आंसुओं को मुस्कुराहट में छुपाती है, ये औरत है यारों कमाल कर जाती है। कभी पिता कभी पति कभी बच्चों की सुने, ये भी उड़ना चाहे पर ख्वाब उनके लिए बुने, गीली मिट्टी है ये हर सांचे में ढल जाती है, ये औरत है यारों कमाल कर जाती है। ऐसा नहीं कि ये कम है किसी तरह, है जोश है काबिलियत और है लबों पर दुआ, अकेले राह पर निकले काफिला बनाती है, ये औरत है यारों कमाल कर जाती है। कभी लक्ष्मी कभी दुर्गा कभी चंडी बन जाती है, हाँ ये औरत कमाल कर जाती है।
4: बहुत खूब, बहुत खूब।
5: शुक्रिया
4: रिदम जी। जब आप इन शब्दों को पढ़ रहे थे तो आप केवल पढ़ ही नहीं रहे थे बल्कि आप अपनी जो शक्ति है उसको भी बयां कर रहे थे। हमारा परिवार तभी पूरा होता है जिसमें माँ होती है, बहन होती है और बाकी सारे हमारी बेटी होती है
5: जी।
4: तो जब आप ये शब्द लिखते हैं तो क्या उस समय ख्याल होता है जब आप ये शब्दों का जाल बुन लेते हैं?
5: आई थिंक जो जब मैंने ये कविता लिखी थी मैंने देखा कि विमेन, हम यूजुअली खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम दूसरों के हिसाब से जीते जाते हैं। जब पहले हम सुनेंगे अपने पिता की, फिर बड़े हुए पति की सुनी, अब बच्चे सुनाते हैं कि ऐसे करो ऐसे नहीं करो। हमारे अंदर भी ख्वाब है, हम भी उड़ना चाहते हैं, बट उनको देखते हुए हम सोचते कि नहीं, पहले पिता के लिए कर लें, फिर पति के लिए कर लें, फिर बच्चों के लिए कर लें। तो वी एक्चुअली अंडर एस्टिमेट आवर सेल्व्स और हम अपने लिए नहीं जीते। तो दिस पोएम आई रोट टू मे बी इंस्पायर अदर विमेन सो दे शुड रियलाइज देयर पोटेंशियल, उनको पता चले उनमें कितनी काबिलियत है और वो खुद के लिए भी थोड़ा जीना शुरू करें। तो दिस इज माई वे ऑफ मोटिवेटिंग अदर विमेन, या उनको इंस्पायर करना, उनको मोटिवेट करना।
4: ये एक बहुत बड़ा आप काम कर रहे हैं। हमारे देश में इस समय आप जैसे लोगों की जरूरत है जो बाकी नारी शक्ति को या तो उनको जगाए या उनको प्रोत्साहित करें ताकि जो काबिलियत उनमें है वो काबिलियत को सामने ले आएं और हम देश को मिलजुल कर आगे की ओर लेके जाएं।
5: जी शुक्रिया। एक और मैंने पोएम, जैसे आपने माँ का जिक्र किया, तो मैंने एक माँ पर पोएम लिखी थी. ऑफ कोर्स कोई भी घर माँ के बिना पूरा नहीं हो सकता. एज अ मदर आई रियलाइज कि हम ज्यादा अपने बच्चों के लिए जीते हैं और कम अपने आप के लिए जीते हैं. तो ये पोएम मैंने डेडिकेट की है हर माँ को. तो कहते हैं, रब का दूसरा नाम होती है, माँ जैसी बस माँ होती है. घर वो मुकम्मल है बस, माँ की इबादत जहाँ होती है. माँ जैसी बस माँ होती है. हर रिश्ते में है खुदगर्जी, लालच बिन बस माँ होती है. रब का दूसरा नाम होती है. हर कोई जब मुंह फेरे, इसके लब पर हाँ होती है. माँ जैसी बस माँ होती है. माँ की गोद है मुझे बताती, क्या दोपहर में ठंडी छा होती है. माँ जैसी बस माँ होती है.
4: बहुत खूब. आपने माँ शब्द, इतना बड़ा शब्द है, इसके बारे में जितना भी हम वर्णन करें पूरी जिंदगी में
5: जी
4: वो कम है. माँ के लिए, पेरेंट्स के लिए हमें करना चाहिए, जितना भी हम करें उतना कम है, क्योंकि हमारा वजूद हमारे माता पिता हैं.
5: जी बिल्कुल.
4: रिदम जी, क्या आप मानते हैं कि लेखिका बनना आपकी विरासत में है? क्योंकि आपके पिताजी सरदार कुलवंत सिंह रफीक जी एक जाने माने कवि है हमारे देश के.
5: जी बिल्कुल, मैं उनको देखते हुए ही बड़ी हुई हूँ. और मैं आई थिंक मैंने जो कुछ भी सीखा है उन्हीं से सीखा है. अच्छा इंसान बनना, अच्छा पोएट बनना, अपने कला को कैसे बेटर बनाना, वट एवर आई हैव लर्न्ड आई ओ इट ऑल टू यू, ऑल टू हिम. जहाँ तक भी जो भी अचीव किया है, पोएट्री बुक हो या स्टेज कंडक्ट करना हो या एंकरिंग करनी हो, आई रिमेम्बर आई वॉज अवॉर्डेड बेस्ट ओरेटर इन द डिस्ट्रिक्ट अवार्ड, कुरुक्षेत्रा डिस्ट्रिक्ट, एंड आई ओ इट ऑल टू हिम. उनको देख के कैसे वो बोलते हैं, एज अ इंसान हाउ ही इज एज अ ह्यूमन बींग, आई थिंक आई हैव लर्नड दिस ऑल फ्रॉम हिम ओनली. और ही इज़ अ डिक्लेयर्ड पोइट इंटरनेशनली ऑल्सो. वो मुशायरों में पार्टिसिपेट करते हैं, पोइट्री कहते हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं. तो अगर मैं उनका 1% भी बन पाऊँ तो आई थिंक आई फील कि आई हैव डन जस्टिस. तो यस, लेखिका बनना मेरी विरासत में ही है. इट्स अ गॉड गिफ्ट. ऑफकोर्स ऑल माइटी की ब्लेसिंग्स के बिना और उनकी ब्लेसिंग्स, माई फादर की ब्लेसिंग्स के बिना ये नहीं हो सकता था.
4: बहुत अच्छी बात है. सरदार कुलवंत सिंह रफीक लिखते हैं. रफीक जो है एक उर्दू लफ्ज है. रफीक का मतलब सबका रहबर, सबको रास्ता दिखाने वाला.
5: जी.
4: तो ये जो तखलुस है, तो इस तखलुस के बारे में क्या आप बता सकते हैं, उन्होंने अपना जो तखलुस है रफीक क्यों रखा?
5: आई थिंक ये जो तखलुस है उससे वो पूरा जस्टिस करते हैं. आई थिंक दिस इज वॉट ही इज अ रहबर, ही इज अ फ्रेंड, ही इज अ गाइड. हर किसी के साथ चलने वाले हैं, हर किसी की हेल्प करने वाले हैं, चाहे आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करनी पड़े. तो आई थिंक द वर्ड रफीक इज सिनोनिम टू हिज पर्सनैलिटी. तो उनको पूरा सूट करता है, पूरा जस्टिस करता है. और उन्होंने शायद ये सोच के रखा कि वो ऐसा बनना चाहेंगे, और हाँ उन्होंने ये अचीव किया है.
4: बहुत अच्छी बात है. और साथ में जब परिवार पूरा होता है एक बच्चे के लिए, माता और पिता, और ऑब्वियसली माँ जो आपके जीवन में एक स्थान रखती हैं, सबके जीवन में स्थान रखती हैं, माँ के बारे में भी आप अगर कुछ बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमारे सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा.
5: जी, माँ के बिना तो हम खुद सब इनकम्प्लीट हैं. जी, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बार जो खुदा थे वो माँ से रूठे थे. तो खुदा ने माँ से कहा कि सब कुछ तो मैं करता हूँ, तुम्हें क्यों सब इतना प्यार करते हैं. तो उसमें मैंने पढ़ा था कि एक रोज खुदा ने माँ से शिकायत की है कि क्यों मेरे बच्चों ने तेरी इबादत की है. हंसकर बोली माँ कि 9 महीने ज्यादा मैंने इसकी हिफाजत की है. हर गम सहा पर न शिकायत की है, तो क्यों ना तेरे बच्चों ने फिर मेरी इबादत की है और मुझसे मोहब्बत की है. तो जी, माँ इज सिनोनिमस विद खुदा. हमारे लिए तो खुदा धरती पर माँ ही है.
4: बहुत खूब आपने माँ का वर्णन उस तरीके से किया. और मैं अपने शब्दों में जब माँ की बात करता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ माँ अनमोल.
5: जी,
4: अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप संगीत भी सुनती हैं?
5: जी जी जी।
4: तो अगर आपको माँ को याद करना हो कभी, तो आप किन शब्दों में अपने पेरेंट्स को, खास करके माँ को याद करती हैं? क्या आप कुछ उनके लिए गुनगुनाते हैं या कैसे याद करती हैं?
5: जी, तो माँ के लिए मुझे गाना बहुत पसंद है, तो मैं वो गुनगुनाती हूँ कि कितनी अच्छी है तू, कितनी भोली है तू, प्यारी प्यारी है ओ माँ।
4: तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं इस समय FM 90.0 पर कार्यक्रम काव्य गोष्ठी, और बात हो रही है माँ की। आइए आपको सुनाते हैं रिदम जी का ये मन पसंद माँ के लिए ये गाना।

0: कि लेखक के मन मस्तिष्क में कब लिखने का ख्याल आता है? क्या कोई समय निर्धारित होता है लिखने के लिए?
1: आई थिंक कोई समय निर्धारित नहीं होता. जब भी मन में कुछ कोई फीलिंग या कोई इमोशन बहुत बढ़ जाता है और हम उसको नहीं कह पाते किसी और से, तो पर्सनली आई फील कि तब हम उसको पोएम्स के माध्यम से जाहिर करते हैं. जैसे आई थिंक श्रोता भी मुझसे अग्री करेंगे कि हम जो लिखते हैं, हम लोगों के पास एक डायरी ज़रूर होती है. जब भी कोई इमोशन, कोई फीलिंग, कुछ लव्स हमें आएँ, कुछ शब्द हमें लगे कि वी शुड बी राइटिंग दीज और एक्सप्रेसिंग दीज, तो हम उस डायरी में लिख देते हैं. तो ऐसा कोई ख्याल नहीं है. कई बार तो मैंने बच्चों की इन्विजिलेशन करते हुए, कुछ देखते हुए मेरे मन में ख्याल आया तो मैंने वहीं से टिश्यू पेपर लिया और वो पोएम मैंने वहीं पर लिख दी. तो ये ख्याल, ये इमोशन कभी भी हम पे हावी हो सकता है और इसका निकलना बहुत ज़रूरी है. तो यूजली वी राइट ऑन अ डायरी या फिर कोई भी पीस ऑफ पेपर जो भी अवेलेबल हो.
0: तो क्या हम इस बात को माने कि अगर एक ख्याल दिमाग में आता है और अगर हम उस समय उसको लिखे नहीं, नोट नहीं करेंगे, क्या वो हमारे मन में रहेगा कि नहीं रहेगा?
1: आई थिंक थोड़े समय तक ही मन में रह पाएगा. ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको लिख लें कहीं, ताकि जो भी शब्द जो भी हमारे मन में आए हैं वो शब्द हम उसी तरह से एक्सप्रेस कर पाएँ जैसे हमारे दिमाग में हैं. तो लिख पाएँ तो बहुत अच्छा होगा कि वो हमें उसी टाइम याद रहेगा. बाद में हो सकता है कोई शब्द आगे पीछे हो जाए. तो आई पर्सनली फील लिखना अच्छा है.
0: तो इस डायरी को आप कैसे श्रोताओं के सामने रखेंगे, जिस डायरी की आपने बात की?
1: जी, मेरे लाइफ में मेरी डायरी ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है. छोटे होते से ही, जब स्कूल में किसी सहेली से ही कोई छोटी सी झड़प हो जानी या कुछ, तो मैं वो भी आके अपनी डायरी में लिखा करती थी. तो डायरी मेरी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा रही है. तो मैंने एक पोएम अपनी डायरी को डेडिकेट की है. तो इट गोज़ कि जब शाम को थक हार कर मैं बैठ जाती हूँ, क्या हालात हैं, जज्बात हैं, इसको बताती हूँ. ये कुछ नहीं कहती, ये सब सुनती है, संग मेरे नामुमकिन से ख्वाब बुनती है. कहीं किसी पन्ने में कोई चोट छुपाई है, तो कहीं अशकों से भीगी स्याही है. कहीं लिखी मैंने कोई अधूरी कहानी है, कहीं बचपन के पल, कहीं गुस्ताख जवानी है. दो पन्नों में एक सूखा गुलाब है, दिल के सौदों का जो करता हिसाब है. लिख कर कहीं कोई धुन मैं गुनगुनाती हूँ, जो अनकहे एहसास हैं इसको बताती हूँ. जब शाम को थक हार कर मैं बैठ जाती हूँ, क्या हालात हैं, जज्बात हैं, इसको बताती हूँ. ये है मेरी डायरी.
0: बहुत खूब आपने इस डायरी के माध्यम से ये बताया, और इसमें आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, अनकहे एहसास. तो अनकहे एहसास के बारे में आप क्या हमें विस्तार से बता सकते हैं, ये अनकहे एहसास क्यों है?
1: जी, तो एज वी मूव ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ, तो बहुत सारे ऐसे एहसास होते हैं, ऐसे इमोशंस होते हैं जो हम किसी को कह नहीं पाते. तो मेरे जैसे लोग तो वो डायरी में लिख लेते हैं. बहुत सारे लोग हैं जिनके जज्बात उनके मन में ही रह जाते हैं. तो मैंने जो मेरी पहली बुक है उसका शीर्षक है अनकहे एहसास, बिकॉज वो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मेरे इमोशंस हैं जो मैं किसी को कह नहीं पाई, तो वो मैंने अपने पोएम्स के माध्यम से जाहिर किए हैं. तो हेंस द टाइटल अनकहे एहसास. ऐसे बाकी लोग भी होंगे जिन्होंने अपनी फीलिंग्स कभी किसी से एक्सप्रेस नहीं की होंगी, तो वो हम ऐसे कुछ फीलिंग्स हम इस बुक में भी पढ़ सकते हैं.
0: रिदम जी, मैंने आपकी जो ये अनकहे एहसास है इसको पढ़ा है
1: जी.
0: इस पे मेरी जिंदगी के साथ एक कविता जुड़ी है जिसका शीर्षक है अपना घर.
1: जी,
0: घर एक व्यक्ति के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, उसके जीवन में उसका क्या असर होता है, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं के लिए ये कविता जरूर पढ़े.
1: जी, ये कविता अपना घर मैंने ये सोचकर लिखी थी कि हम ता उम्र, स्पेशली हम औरतें, यू नो, ता उम्र अपना घर ढूंढ रहे होते हैं. पहले जब माँ बाप के घर में होते हैं तो होता है कि चलो इसने दूसरे के घर चले जाना है. जब शादी होती है उनके घर जाते हैं तो बोलते हैं कि ये

0: यू नो माँ बाप के घर से आई है, तो हम ताउम्र यही ढूंढ रहे होते हैं कि हमारा कौन सा घर है. लाइक व्हेन आई शिफ्टेड टू दुबई, ऑफकोर्स वो उनका घर है जिनसे हमने लीज पे लिया है, तो मैं यही सोचती हूँ कि हमारा घर कौन सा है. तो आई फेल्ट कि वी शुड बी मेकिंग अ घर इनसाइड अस, हमें अपना घर अपने अंदर ढूंढना चाहिए ताकि कुछ भी बदले, कोई आए कोई जाए, कोई तुम्हें वैल्यू करे या नहीं करे, तुम खुद को वो वैल्यू दे पाए.
1: हमारा अपना घर हमारे साथ चलता रहे.
0: जी जी जी. और चाहे निगाहें बदलें, वफाएं बदलें, आपका घर आपके अंदर हो तो आप कभी बेघर नहीं होगे. तो उस पे मैंने लिखा था अपना घर. तो ये दिस गोज की सजा मिली गलतियां हम मगर ढूंढते हैं, अपने अंदर ही अब अपना घर ढूंढते हैं. जहां ना कोई बोले कि हम धन पर आए हैं, ना कोई सोचे कि दूजी जगह से आए हैं, जो हर हाल में अपना समझे वही नजर ढूंढते हैं, अपने अंदर ही अब अपना घर ढूंढते हैं. पड़े जो हम पर पत्थर इसकी नींव में भर देंगे, प्यार वफा के रंगों से दीवारें रंग देंगे, जो मंजिल तक पहुंचाए वो एक डगर ढूंढते हैं, अपने अंदर ही अब अपना घर ढूंढते हैं. जो फिर किसी के दिल में आशियां बनाएंगे, जो बदली उनकी वफाएं तो बेघर हो जाएंगे, जो मांगी थी दुआएं उनमें असर ढूंढते हैं, अपने अंदर ही अब अपना घर ढूंढते हैं. सजा मिली गलतियां हम मगर ढूंढते हैं, बस अब अपने अंदर अपना घर ढूंढते हैं.
1: बहुत खूब, बहुत खूब. आपने रिदम जी मेरे अंदर बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं इस कविता के माध्यम से. हमारी कोशिश है कि हम जब भी कोई शब्द लिखें, अगर वो किसी के लिए मरहम का काम करती है, इससे बेस्ट कोई भी चीज नहीं हो सकता है. क्योंकि मैं अपने जीवन में अपना घर खो चुका हूं
0: जी.
1: और पिछले 33 वर्षों से मैं अपने ही देश में विस्थापित हूं. तो मेरे लिए घर कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी बड़ी बात है, तो आपने मुझे एक रास्ता दिखा दिया कि वो जो घर हम पीछे छोड़ आए हैं वो घर आज के बाद मेरे मन में होगा, जहां मैं हूं वहां मेरा घर होगा. इसके लिए आपका हमारी ओर से, रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद.

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम काव्य गोष्ठी और आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है श्रीमती रिदम डडियाला जी। ये इस कार्यक्रम का अंतिम भाग है, आइए बातचीत जारी रखते हैं रिदम जी से। रिदम जी, आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप समझते हैं कि कविता या शायरी मरहम या सुखद एहसास का अनुभव पढ़ने वाले को या सुनने वाले को देती है?
1: जी बिल्कुल, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ फील कर रहे होते हैं बट हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या चीज़ तंग कर रही है। पर्सनली मेरे साथ ऐसा होता है और जब कभी मैं किसी और की शायरी सुनती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि इस चीज़ को हम ऐसे टैकल कर सकते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स कई बार ऐसा लगता है किसी को सुन के या समझ के ही सॉल्व हो गई हैं। तो बिल्कुल, आई थिंक पोएट्री कैन बी अ मीडियम अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी को कंफर्ट देने के लिए, किसी को अंडरस्टैंडिंग देने के लिए बहुत इश्यूज पे। तो यस, इट इज़ डेफिनेटली अ मीडियम। तो मैंने ये एक कविता लिखी थी कि आई फील कि हम लोग ना लेट गो नहीं करते। मैंने अपने पर्सनल लाइफ में देखा, प्रोफेशनल लाइफ में देखा कि हम पास्ट को पकड़ कर बैठे हैं, अपने पुराने जख्मों को पकड़ कर बैठे हैं जो हमें मेंटली ख़राब कर रहा है, हमें इमोशनली इम्पैक्ट कर रहा है, हमारा हेल्थ ख़राब कर रहा है। तो इफ़ दिस पोएम ऑफ माइंड कुड हेल्प एनीवन टू लेट गो देन आई विल फील कि मेरा ऑब्जेक्टिव एक अचीव हुआ है
0: जी।
1: तो मैंने एक पोएम लिखी थी, रोको मत जाने दो
0: जी।
1: तो वो कहते हैं कि रोको मत जाने दो, बचपन में ये कहीं पढ़ा था, पढ़कर बस हवा किया था, इन लफ्जों में थी कितनी गहराई, ये बात आज समझ में आई। रोको मत जाने दो, जाने दो हर उस बात को, अधूरी सी मुलाकात को, हर एक झूठे जज्बात को, आंसुओं में भीगी रात को, रोको मत जाने दो। जो तुम्हारी आहट से उनका चेहरा न खिले, आंखें नम हो और दिल न पिघले, संग तुम्हारे चल उन्हें मंजिल न मिले, दर्द देने के तुम्हें चलते रहें सिलसिले, तो रोको मत जाने दो। हर ख्वाब हो पूरा जरूरी नहीं, हाँ थी एक कहानी अधूरी रही, शायद हर तरफ मजबूरी रही, सुकून से बढ़कर कुछ जरूरी नहीं, तो बस रोको मत जाने दो।
0: हाँ बस जाने दो
1: जी।
0: बहुत खूब आपने ये कविता पढ़ी और रिदम जी से जानना चाहूंगा कि रिदम जी का जीवन में लक्ष्य क्या है?
1: आई थिंक एज अ टीचर आई रियली लव माई प्रोफेशन। तो इफ आई से प्रोफेशनली एज अ टीचर, मेरा लक्ष्य है टू हेल्प माई स्टूडेंट्स ग्रो, टू हेल्प।
0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक टाइटल सॉन्ग, पलायन यानी विस्थापन। ये गीत वो दर्द बयान करता है जो हर कश्मीरी पंडित का है, मेरा है, जिस कारण हम सबको अपने घर जमीन छोड़ के आना पड़ा था। आए तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां वर्ष शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने वाले आदरणीय गोपी सप्रू जी। इस टाइटल सॉन्ग पलायन को संगीत दिया है, लिखा है और निर्देशित किया है इसी महान कलाकार ने, जिनको हम गोपी सप्रू जी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये टाइटल सॉन्ग पलायन और महसूस करते हैं वो दर्द जो हर एक शब्द में कहा गया है, लिखा गया है और तैयार किया गया है।

0: Atunci mi-a legul, măzuri, mi-a măzuri, mi-a mai mi-a legul. Ascultă, mi-a ascultă să am cot, aș și bateau, aș către chiar cu drumul.
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का
2: सुनन खातर हरियाणवी सॉन्ग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पर फोन।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए,

0: Dalaj Mahal. एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: यू आर लिस्निंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
2: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
3: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
2: आधुनिक शिक्षा के लिए
3: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: डॉक्टर आर के शर्मा से। आपकी बातचीत का विषय है हड्डियों और जोड़ों में आम तकलीफें।
1: डॉक्टर साहब आपका स्वागत है।
2: शुक्रिया जी।
1: डॉक्टर साहब आज जिस बीमारी के बारे में हम आपसे जानकारी हासिल करेंगे, हड्डियां या जोड़ों की क्या क्या तकलीफें होती हैं?
2: ऑर्थो में हड्डियों या जोड़ों की तकलीफ़ों को हम बड़े दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है ट्रॉमेटोलॉजी या हॉट ऑर्थोपेडिक्स, जिसमें चोट लगने से जो भी तकलीफ हड्डी में आए, जैसे फ्रैक्चर हो जाना, गिरने से हो, एक्सीडेंट के कारण हो, कोई मारपीट के कारण हो जाए, किसी भी तरह से जब हड्डी टूटे, उसको हम हॉट ऑर्थोपेडिक्स में लेते हैं। दूसरा है कोल्ड, जिसमें हड्डियों की बीमारियाँ, जैसे इन्फेक्शन्स ले लीजिए, या उम्र के साथ जोड़ों का घिस जाना, जैसे अर्थराइटिस, या कोई ट्यूमर्स हो जाए बोन में, या कोई और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाए, उसको हम कोल्ड, जो लंबी बीमारियां, उसमें ले लेते हैं।
1: हमारे शरीर में कुछ ऐसी हड्डियां होती हैं जो बड़ी नाजुक होती हैं। अभी आपने टूटने की बात की, या एक्सीडेंट से टूट जाती हैं, या मारपीट से टूट जाती हैं। कौन कौन सी ऐसी हड्डी है जो इस तरह एकदम से टूट जाती है?
2: फ्रैक्चर, हड्डी के टूटने को फ्रैक्चर बोलते हैं। और बॉडी के किस हिस्से में हड्डी जो है वो कितना वजन उठाती है, तो हड्डी की ताकत उस हिसाब से कुदरत ने वो की है। जैसे टांग की और बाजू की हड्डियाँ, ये सबसे स्ट्रांग है, और स्पाइन की हड्डियाँ, जैसे ब्लॉक, एक के ऊपर एक ब्लॉक लग के वर्टीब्रा बन के बनती हैं, वो कंपेरेटिवली बाजू या टांग की हड्डियों से कमज़ोर हैं। तो छोटी, जैसे रिस्ट की स्मॉल छोटी छोटी बोन्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम है। तो ओवरऑल स्पीकिंग, लॉन्ग बोन्स, जो लंबी हड्डियाँ, वो ताकतवर हड्डियों में आती हैं, और छोटी छोटी जो हड्डियाँ हैं उनको कमज़ोर हड्डियों में बांट सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, मान लीजिए कोई हड्डी टूट जाती है, क्या करना चाहिए?
2: सबसे पहले तो फर्स्ट एड, जिसको बोलते हैं, फ्रैक्चर में जब भी हड्डी टूटे, उसमें दो प्रकार का हो सकता है फ्रैक्चर। एक हम जिसको सिंपल फ्रैक्चर बोलते हैं, जिसमें सिर्फ अंदर से हड्डी टूटी है, लेकिन ऊपर से चमड़ी में कोई सुराख नहीं हुआ, कोई ज़ख्म नहीं हुआ। दूसरा है जब हड्डी भी टूटती है और साथ में ऊपर ज़ख्म हो जाता है, जिसको हम कंपाउंड फ्रैक्चर बोलते हैं
1: जी।
2: तो दोनों में आपने स्प्लिंट तो लगाना है। स्प्लिंट मतलब आप बाहर से सपोर्ट लगाएंगे उस टांग या बाजू को, जहाँ भी लगी है पट्टी से बांध देंगे, और इमिजिएटली कोशिश करेंगे कि उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाएँ, जहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन हो। तो फिर उसका एक्सरे करा के, फिर डिपेंड करता है प्लास्टर से, ऑपरेशन से, जैसे भी इलाज चले। तो शुरू तो ऐसे ही होता है
1: जी। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे इसलिए ये पूछा था कि हड्डी अगर टूट जाती है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि होता है कि जब इस तरह की कोई समस्या पैदा होती है तो एकदम से हम घरेलू इलाज करना शुरू करते हैं।
2: बिल्कुल, घरेलू इलाज में, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आमतौर पर जैसे बड़े बड़े शहरों में भी होता है, लेकिन गाँव में अक्सर यही होता है, क्योंकि ऑर्थोपेडिक सर्जन्स इतनी अवेलेबल नहीं हैं, तो लोग उनको जैसे मालिश करने वाले के पास या कोई बांधने वाले के पास ले जाते हैं। तो वो लोग बेचारे पुराने तरीके से बांध देते हैं। बांधना तो है आपने भी, बट उसमें कितना ज़ोर लगा के आपने बांधना है, वो तो इतने ज़ोर से बांध देंगे कि आपका जो नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बंद हो जाता है
1: जी।
2: कई बार गैंग्रीन हो गया, कई बार लोगों की टांगें बाजू काटनी पड़ी हैं कि इतनी ज़ोर से उन्होंने बांध दिया। तो उसमें
1: बांधना भी है इस तरह से कि ब्लड सर्कुलेशन जो है उसमें किसी तरह की रुकावट पैदा ना हो,
2: उसमें रुकावट ना आए
1: जी। जी,
2: तो उसके बाद कोशिश यही करनी चाहिए कि स्प्लिंट आप किसी से भी लगवा लो, लेकिन एक दो दिन के अंदर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाएं, तो ताकि आगे आपका पक्का इलाज हो जाए।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, मान लीजिए कहीं पर इसकी सुविधा नहीं है, जैसे हॉस्पिटल तक पहुँचने में समय लगता है, तो आपने कहा बांधना चाहिए, उसके लिए कोई खास इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आप?
2: उसमें यही है कि एक
1: घरेलू
2: तरीके से बांधने के लिए एक बेसिक प्रिंसिपल हम जो ऑर्थोपेडिक्स में लेते हैं, वो है कि जो भी हड्डी हो उसका आगे वाला और पीछे वाला जोड़, दोनों को आप इमोबिलाइज करेंगे। मतलब जो फट्टी जो नीचे लगाते हैं, आप फट्टी लगाएं, कोई भी चीज़ लगाएं, उसकी जो लेंथ है वो हड्डी की लंबाई से ज़्यादा होनी चाहिए। दोनों जोड़ आगे का पीछे का ले लेंगे, मरीज को दर्द नहीं होगा, और जो टिश्यूज को ज्यादा नुकसान हिलने डुलने से वैसा होना है वो नहीं होगा
1: जी। ऐसा भी होता है जब कोई गिर जाता है, स्कूटर से गिर जाता है, एकदम से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद उसकी मालिश करना शुरू करते हैं।
2: हाँ,
1: ये किस हद तक सही है?
2: मालिश से तो हम लोग तो मालिश, जब फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर में मालिश का रोल नहीं है, ऐसे हम कह सकते हैं कि मालिश से आपको फ़ायदा होगा, बट आगे ही आदमी को तकलीफ़ है, चोट लगी हुई है, कुछ टूटा है अंदर, आप उसको हिला के कंफर्ट देने के बजाय उसको डिसकंफर्ट दे रहे हैं, उसको और दर्द हो रहा है।
1: अच्छा, क्या करना चाहिए अगर इस तरह के
2: कुछ भी हो,
1: पैदा होते हैं?
2: हाँ, कहीं भी किसी को चोट आए तो उस हिस्से को आप रेस्ट में ले जाओ। अगर आपका जोड़ कहीं टल गया उसमें भी आप हिलाओगे तो दर्द ज़्यादा होगा, हड्डी टूटी है तब भी हिलाओगे दर्द ज़्यादा होगा, तो कोई भी चोट हो उसमें आपने उसको इमोबिलाइज, मतलब उसको उस हिस्से को आप रेस्ट में ले जाओ और नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके आगे इसका इलाज चले। डॉक्टर का काम है हड्डी को अपनी जगह पे जहाँ टूटने से पहले थी वहाँ ला के रख देना है, बाकी तो कुदरत कंट्रोल कर रही है, जोड़ी की तो कुदरत
1: जी,
2: तो डॉक्टर का सिर्फ यही काम है। तो वो हड्डी के टूटने के बाद पहले के जो 1-2-3 हफ्ते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कुदरत तो वेट नहीं करेगी कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे और हड्डी जुड़ना शुरू करेंगे, लेकिन जब जैसे ही हड्डी टूटती है वैसे ही जुड़ना शुरू हो जाती है
1: जी, जी।
2: तो पहले 3 हफ्ते में सॉफ्ट कैलस,
1: ये
2: नेचुरल प्रोसेस
1: है जी, जी।
2: तो उस प्रोसेस में अगर आपने हड्डी अपनी जगह पे डॉक्टर ने ला दी, जुड़ना शुरू हो गई, आमतौर पे आपने देखा होगा कि लटक जाते हैं केस
1: जी,
2: कि इसकी हड्डी नहीं जुड़ रही, क्योंकि उसका फर्स्ट इनिशियल जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर नहीं होता।
1: यानी 2 सप्ताह आपने कहा,
2: 2 या 3 सप्ताह में
1: बहुत इम्पोर्टेंट,
2: बहुत इम्पोर्टेंट, फर्स्ट 3 आर वेरी इम्पोर्टेंट
1: जी। यानी डॉक्टर साहब, हम इस बात को फिर से दोहराएंगे कि अगर कभी कोई एक्सीडेंट होता है या कोई स्कूटर से गिर जाता है तो इमिजिएटली आपने उस हिस्से को रेस्ट देना है,
2: उस हिस्से को
1: जहां आपको लगता है टूटने के चांसेस हैं। डॉक्टर साहब, अब हमारे इस प्रोग्राम का एक गीत संगीत, तो कहते हैं कि आजकल के इस तनाव भरी माहौल में बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा रेस्ट मिलता है, तो आपकी पसंद का अगर कोई गीत हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे जो आपकी पसंद हो।
2: गीत में तो जगजीत सिंह जी का ही गाना सुना दीजिए, वो तुमको देखा तो ख्याल आया
1: जी, जी, जी। ये फिल्म साथ साथ से है, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में।

0: डॉक्टर राकेश शर्मा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपसे बात हो रही है, जो हड्डियाँ या जोड़ों की किस तरह की परेशानियाँ होती हैं, क्या क्या तकलीफें होती हैं। हमारा दूसरा सवाल है, टूटने के अलावा और क्या हो सकता है? जैसे घुटने की दर्द होती है या गर्दन में दर्द होती है, कमर में दर्द होती है,
1: बिल्कुल ठीक है,
0: ये क्या चीज़ें हैं?
1: इसको हम इसको भी जो कोल्ड ऑर्थोपेडिक्स में हम डिफरेंट इसमें टॉपिक्स में ले सकते हैं। वन इज़ पोस्चरल प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का ज़माना आ गया, लोग बैठ के ज़्यादा काम करते हैं, एक्सरसाइज बहुत कम कर रहे हैं, तो जिस्म में, हड्डियों में और मांसपेशियों में कमज़ोरी आ जाती है। जिस्म को आप जितना इस्तेमाल करेंगे उसमें उतनी ताकत रहती है, और पोस्चर जब आपका बैठने का ठीक नहीं हो और जिस्म में ताकत ना हो तो आपके मसल थक जाते हैं। तो आधी से ज़्यादा बीमारियाँ तो इसी की वजह से हैं। बाकी बीमारियाँ जैसे आर्थराइटिस हम कहते हैं
0: जी,
1: वो एज रिलेटेड भी हो सकती हैं, या कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ रिलेटेड भी हो सकती हैं, या कोई पुरानी जोड़ में चोट हो उसके कारण।
0: आर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं?
1: आर्थराइटिस मीन्स जोड़ में दर्द, किसी भी जोड़ में दर्द को हम आर्थराइटिस बोलते हैं। और सेकेंडरी है कोई चोट लगी हो या जोड़ में कोई बीमारी हो जाए, तो दैट इज़ ऑल्सो सेकेंडरी आर्थराइटिस, लेकिन दैट इज़ सेकेंडरी टू समथिंग।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, आम तौर पे एक शिकायत मिलती है, आपके पास भी मरीज इस तरह के आते होंगे, कि घुटने में दर्द है, ये एक नई बीमारी जैसे पैदा हुई है।
1: घुटने में दर्द का कारण एक्सरसाइज ना करना और पोस्चर, जैसे हम ज़मीन पे बैठ जाते हैं, एक जगह बैठे रहे, एक्सरसाइज कोई नहीं की, स्टिफनेस आ जाती है। शुरू शुरू में स्टिफ हुआ, ध्यान नहीं किया, बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते आपका जोड़ अंदर से ख़राब होना शुरू हो जाता है, फिर सूजन आ जाती है, तो ग्रेजुअली वो आर्थराइटिस वाला साइकिल चलना शुरू हो जाता है। तो इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए आपको किसी ना जैसे भी, जब भी आपको जोड़ में दर्द शुरू हो, वैसे ही सूजन से पहले, या अगर सूजन पहले आ जाए तो डॉक्टर की सलाह लें और पोस्चर प्रॉपर करें, इलाज कराएं, और अल्टीमेटली आपको एक्सरसाइज पे ही आना है।
0: जी जी,
1: आर्थराइटिस में एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा रोल है, मेडिसिन का उतना रोल नहीं,
0: यानी एक्सरसाइज का बहुत रोल है जी,
1: और प्रॉपर डाइट।
0: जी जी जी, तो आमतौर पे एक घुटने में दर्द महसूस किया जाता है,
1: उसमें चोट के कारण भी हो सकता है, क्योंकि जोड़ में कई लिगामेंट्स हैं, लिगामेंट में चोट आ जाए, कोई मेनिस्काई है, कोई क्रोशेट लिगामेंट्स है, किसी कोई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर किसी में चोट आ जाए उसके कारण भी हो सकता है, या आमतौर पर गाउट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है उसके कारण कई बार एक जोड़ में दर्द शुरू हो जाता है, या कई घंटिया जिसको कहते हैं रूमेटॉइड, उसके फिर प्रेजेंटेशंस डिफरेंट है, और उसको रूल आउट आप करते हैं इन्वेस्टिगेशन से, जो डायग्नोसिस उस हिसाब से।
0: हमें कैसे पता चलेगा कि ये गाउट से हमें घुटने की दर्द महसूस होती है?
1: आप हिस्ट्री जब देंगे डॉक्टर को तो डॉक्टर डिफाइन करेगा ये किस कैटेगरी में फिट होता है। गाउट में मोस्टली मिडनाइट पेन्स होती हैं, और लोकलाइज्ड स्वेलिंग होगी, नॉन ट्रोमेटिक, चोट नहीं लगी होगी, सूजन होगा, और कई बार हिस्ट्री भी होती है, जेनेटिक है, पानी लोग कम पीते हैं, डाइट्री, हैवी फूड्स, नॉन वेज खुला, और आजकल ड्रिंक्स विंक्स ज़्यादा लेते हैं लोग, ये सब चीज़ों से ये रिलेट करके अल्टीमेटली क्लिनिकली आप बनाते हो।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से गर्दन में हम दर्द कभी कभी महसूस करते हैं, या आमतौर पर कमर में दर्द महसूस करते हैं, और कमर में दर्द की जब बात आती है तो लेडीज़ आमतौर पर कमर में दर्द महसूस करती हैं।
1: हाँ, कमर में दर्द का सबसे ज़्यादा कारण लेडीज़ में इसलिए है क्योंकि उनको ज़्यादा काम झुक के करना पड़ता है, और जितना ज़्यादा काम करें उतनी एक्सरसाइज भी चाहिए बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए, तो उतनी एक्सरसाइज हमारी लेडीज़ कर नहीं पाती, और डाइट का इतना ख्याल नहीं है, तो अगर ये पोस्चर अपना थोड़ा झुकने वाला कम करें, एक्सरसाइज करते रहें, बीच बीच में दवाई भी लेते रहें, तो मेरे ख्याल में ये फ़र्क पड़ सकता है, पर ज़्यादा ये पोस्चर के साथ ही है।
0: जी जी,
1: यहाँ डिस्क हो सकती है बीमारियाँ, वो कुछ हो, बड़ी तेज़ दर्द, दर्द को भी आप डिवाइड करते हो एक्यूट या क्रॉनिक पेन्स। एक्यूट मतलब इतनी सीवियर, बड़ी ज़्यादा पेन है, उसके और कारण है।
0: अच्छा, जब हम गर्दन में दर्द महसूस करते हैं तो सिरहाना जब हम इस्तेमाल करते हैं सोने के वक्त, उसमें किसी तरह का ख्याल रखना पड़ता है, जब आप पोस्चर्स की बात आपने की।
1: इवन पोस्चर में हम स्पाइन, दोनों सर्वाइकल जिसको गर्दन का कह रहे हैं, दूसरा लंबर जो नीचे कमर का दर्द है, इसको अगर आप देखें तो एनाटॉमिकल नेचर ने इसको थोड़ा कर्वेचर दिया, नेक का भी कर्वेचर थोड़ा आगे को है और लंबर स्पाइन जो कमर का है उसका भी आगे को है, तो नेचुरल कर्व जो हैं इनको आदमी हमने सपोर्ट करना है, जब हम सोते हैं कोशिश करें कि तकिया आपका गर्दन के नीचे आए ताकि आप नेचुरल कर्व को सपोर्ट करें, और जब काम करें तो ज़्यादा देर झुक के मत करें। लिखने पढ़ने वाले या कंप्यूटर वाले लोग हैं वो अपना लिखने के लिए सामने राइटिंग डेस्क रख लें, मॉनिटर का लेवल अपने आईज के लेवल पे ले आएं और चेयर जो आपकी स्टिफ हो सो दैट आप बिल्कुल सीधा बैठें, तो स्ट्रेट रहने से स्पाइन के ऊपर लोड कम हो जाता। जब भी आप 90 डिग्री से आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे तो आपके मसल्स कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, तो मसल का काम करने का एक लेवल, उस थ्रेशोल्ड के बाद, उस लेवल के बाद वो दर्द करना शुरू करेगा जिसको फटीक पेन या वो बोलते हैं। तो फटीक को आपने बढ़ाने के लिए, उसका टाइम पीरियड बढ़ाने के लिए आपने बाई विगर एंड वाइटलिटी के लिए एक्सरसाइज, तभी एक्सरसाइज और पोस्चर का सबसे ज़्यादा रोल।
0: आजकल लोग कम चलते हैं पैदल, तो शायद इस वजह से भी इस तरह की बीमारियां समझ आती
1: हैं। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जिस्म को आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतना स्ट्रांग होता है, और जितने मसल स्ट्रांग हों डायरेक्टली उतनी बोन स्ट्रांग हो जाती हैं।
0: डॉक्टर साहब, अब हम अपनी बातचीत तो जारी रखेंगे लेकिन एक आपकी पसंद का कोई गीत सुनवाना चाहेंगे हम अपने सुनने वालों को।
1: अभी आप लता जी का कोई गाना सुना दीजिए।
0: लता जी की आवाज़ में कोई भी गीत सुनना चाहेंगे?
1: कोई भी सुना।

0: डॉक्टर राकेश शर्मा हमारे साथ हैं आज के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, अगर इस तरह की बीमारियां हैं तो हड्डियों को तंदुरुस्त रखने के लिए किस तरह की खुराक लेनी पड़ती है?
1: हड्डियां तो कैल्शियम और फास्फोरस मेन दो एलिमेंट्स हैं जिससे बनी हैं, प्लस जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कोलेजन है, दैट इज़ प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन का नेटवर्क बनता है, उसके बीच में जो है कैल्शियम और फास्फोरस डिपॉजिट। तो जो भी डाइट कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर हो, जैसे दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको बंद नहीं करने, प्लस बाकी और भी डाइट्स हैं जैसे गुआवा है, उसमें भी कैल्शियम अच्छा है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसमें सारे मिनरल्स और वो विटामिन्स भी आते हैं, फ्रूट्स, ये रेगुलर लेते जाएं। लेकिन अगर इन चीज़ों से, अगर कई आदमी हैं जिनको दूध हज़म नहीं होता, दही वो खा नहीं रहे या खा नहीं पाते, तो ऐसे लोगों को दवाइयाँ लेनी पड़ती है जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी, बी कॉम्प्लेक्स, वो फिर आप रिप्लेस करते हैं दवाइयों से। लेकिन बेसिक चीज़ जो एक्सरसाइज है वो कंटिन्यू, वो तो चल रही
0: है। अच्छा डॉक्टर साहब, किस तरह की एक्सरसाइज करनी पड़ती है?
1: हर मसल का जो है बॉडी में, हर मसल का अपना एक एक्शन है, और जिस मसल को आप स्ट्रांग करना चाहते हैं उसके मुताबिक आप एक्सरसाइज करें। जैसे कमर के लिए आमतौर पे उल्टा लेट के या सीधा लेट के, वो डिपेंड करता है मरीज़ की सिचुएशन पे, वैसे आप समझाते हैं, ऐसे गर्दन पे भी, बट बेसिक प्रिंसिपल है जो मसल का एक्शन है उसी को आप बार बार करा के उस मसल को ताकतवर बनाते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, जब हमारे बुज़ुर्ग जो होते हैं, क्या उनको भी कोई ख़ास डाइट लेनी पड़ती है अपनी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए?
1: 50 साल के बाद औरत हो या मर्द हो, दोनों की हड्डियों में कमज़ोरी नेचुरल आ जाती है, जैसे हार्मोनल चेंजेस आती हैं फीमेल्स में, मेल्स में भी एक्टिविटी कम हो जाती है, डाइट वैसी नहीं रहती, तो उसमें मोस्टली हम जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, ये बड़ी कॉमन बीमारी ही समझ लीजिए, बीमारी ही है, बट उसमें भी डाइट तो वही रहेगा, कैल्शियम वाला मेन, विटामिन डी, बी कॉम्प्लेक्स एंड प्रोटीन डाइट, बट एक्सरसाइज का रोल उसमें भी बहुत है। कई बार आपको इन चीज़ों के अलावा फीमेल्स में कई बार हार्मोन्स देने पड़ते हैं, जैसे HRT करते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, या वैसा एनाबॉलिक्स मेल्स में देते हैं आप, वो सपोर्टिव थेरेपीज हैं, बट मेन स्टे जो है वो एक्सरसाइज ही रहता है, प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज एंड प्रॉपर पोस्चर।
0: जी,
1: अगर आपकी हड्डियाँ मजबूत हैं तो टूटेंगी भी नहीं जल्दी और थकेंगी भी नहीं जल्दी।
0: जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो पैदल चलना कितना ज़रूरी है?
1: बहुत ज़रूरी
0: एक इंसान के लिए।
1: पैदल चलना बहुत ज़रूरी है, और सारे जोड़ हिलाने, सारी मांसपेशियाँ दिन में कम से कम 2-3 बार हिला लें, तो एक्शन ही लाइफ है।
0: जी, दवाइयों को अवॉइड करना है?
1: दवाइयाँ जब ज़रूरत हैं, जब ज़रूरी हैं तब तो खानी है, बट ऐसे तो डाइट और एक्सरसाइज से ही पूरा हो जाए तो बड़ा अच्छा है, नहीं हो तो फिर तो आपको दवाई खानी ही है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड और हड्डी रोग क्या ताल्लुक है आपस में?
1: यूरिक एसिड जो नॉर्मली, हाँ हाँ जी, यूरिक एसिड, ये दिस इज़ ए नॉर्मल बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, नॉर्मली ये यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है, बट कई बार डिहाइड्रेशन हो जाए बॉडी में या और कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम से लेवल बढ़े या ना बढ़े, इसके क्रिस्टल्स जॉइंट्स के अराउंड, इनकी एक टेंडेंसी है जॉइंट के आसपास बैठ जाते हैं और वहाँ सूजन पैदा करना शुरू कर देते हैं,
0: तभी पेन होती है,
1: तभी पेन शुरू हो जाता है। इसलिए आमतौर पे सबसे जो टिपिकल क्लासिकल, जिसको हम बुक पिक्चर बोलते हैं, वो पाँव के अंगूठे के बिल्कुल पास, मिडनाइट आदमी सोया और सुबह देखे वो एकदम जगह लाल हो गई, सूजन हो गया, तो ऐसे किसी भी जोड़ में हो सकता है। तो आमतौर पे ये हड्डियों के आसपास ही होता है, इसलिए हड्डियों वाले यूरिक एसिड के साथ ज़्यादा रिलेटेड है।
0: आमतौर पर बात होती है जब इस तरह की कोई हड्डी बीमारी की बात होती है तो यूरिक एसिड का नाम पहले आता है। जी जी, तो कैसे बचा जाए अगर इस तरह की कोई परेशानी हो?
1: यूरिक एसिड, हाँ, यूरिक एसिड के लिए तो स्पेसिफिक तो दवाई तो है ही है, प्लस इसके लिए परहेज सबसे ज़रूरी है कि आपकी बॉडी की हाइड्रेशन पूरी रहनी चाहिए, पानी खूब पिए, और डाइट्स वैसी नॉन वेजिटेरियन डाइट कम लें, और वेजिटेरियन में भी कुछ ऐसी हैं जैसे राजमा है, बैंगन है, भिंडी है, ये चीज़ें थोड़े कम लें, हाँ ये थोड़ा कम लें, पानी का इस्तेमाल खूब करें।
0: डॉक्टर राकेश शर्मा, अब चलते चलते आपकी पसंद का गीत हम आपके, हमारे सुनने वालों तक पहुंचाना चाहेंगे।
1: अब तो वही सुना दीजिए, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, आपकी बात दूर तलक पहुंच जाएगी, पहुंचनी चाहिए।
1: शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: अभी आप स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर आर के शर्मा से की गई भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंट वार्ता का विषय था हड्डियों और जोड़ों में आम तकलीफें। आपसे बातचीत कर रहे थे रमेश मराठा।
1: तो श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा?

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: FM 90.0 MHz से रेडियो विदस्ता पर प्रस्तुत है विश्व हृदय दिवस पर डॉक्टर राजेश नंदल का संदेश।
2: स्वस्थ हृदय के लिए एक जन जागरूकता पहल, हेल्थ विजन्स एम हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा।
3: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज वर्ल्ड हार्ट डे पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश नंदल मुलाना से, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। वो हमें बताएंगे कि दिल को स्वस्थ कैसे रखा जाए। आज के इस विश्व हृदय दिवस पर हम आपसे जानना चाहते हैं, दिल की बीमारी के शुरुआती लक्षणों को मरीज कैसे पहचान सकते हैं।
4: नमस्कार। बहुत पिछले कुछ समय से कुछ भी हल्का सा काम करते ही आपको छाती में अगर भारीपन हो जाता है, सांस फूल जाता है या दर्द होने लगता है, तो ये कहीं ना कहीं दिल से जुड़ा हो सकता है। तो इसलिए हमेशा, अगर आप पहले अगर 1 किलोमीटर अच्छे से चल पाते थे और अब मुश्किल से आपको 100 मीटर चलने पे ही अगर सांस फूल जाता है, तो ये दिल का लक्षण हो सकता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है और अगर उसको अचानक बहुत कम काम करने पे या अगर बैठे बैठे भी अगर छाती में दर्द हो, सांस फूले, छाती में भारीपन हो या धड़कन बहुत तेज होने लगे, तो ये कहीं ना कहीं दिल की बीमारी के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं।
3: क्या तनाव से दिल का दौरा पड़ सकता है?
4: तनाव दिल के दौरे का बहुत मुख्य कारण है। तनाव आपके जो हृदय की नसें हैं उनमें ब्लॉकेज को बढ़ा देता है, या अगर ज्यादा तनाव है तो आपकी जो ब्लॉकेज है उसके ऊपर क्लॉट जमा देता है, और क्लॉट अगर बनता है तो उससे हार्ट अटैक या दिल का दौरा आ जाता है। या फिर अगर आप लंबे समय से तनाव पे हैं तो कहीं ना कहीं ये ब्लॉकेज को भी बढ़ावा देता है। ये काफी रिसर्च से अभी प्रूव हो चुका है, और कई बार तो जो पुराना ब्लॉकेज है उसमें क्लॉट बनने की संभावना होती है अगर आप तनाव में हैं तो।
3: डाइट और एक्सरसाइज दिल के लिए जीवन रक्षक कैसे हो सकते हैं?
4: डाइट और एक्सरसाइज दिल की बीमारियों से बचाव के बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखिए मुख्यतः जो दिल की बीमारी के जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर हैं वो हैं ब्लड प्रेशर, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल। तो डाइट और एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल तीनों को कंट्रोल करने में बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी भूमिका है। इवन कुछ फूड तो जो इन्फ्लामेशन होता है, जो एक मेन कारण है ब्लॉकेज का, उसको भी कम करता है। तो इन दोनों का हमें बहुत ही ध्यान देना चाहिए। डाइट और एक्सरसाइज दिल के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डाइट के बहुत सारे पार्ट हैं, जिसमें अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं आपको वेट ठीक रहता है, आपका बीपी जो एक कारण है दिल की बीमारियां होने का वो कंट्रोल में रहता है। यहाँ एक्सरसाइज के बारे में मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा आपको कि एक्सरसाइज ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि मुझे ये एक्सरसाइज करनी है, वो एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले ये जरूरी है कि आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें, अगर हो सके तो कम से कम एक हफ्ते में 150 से 200 मिनट आप एक्सरसाइज को दें, और जो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वो करें। थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करना कहीं ना कहीं दिल के लिए लाभदायक रहेगी। और डाइट में खास करके कोई जो तली हुई चीजें हैं, जो बार बार फ्राई होती हैं, जिनमें ट्रांस फैटी एसिड बढ़ जाते हैं, उनको बिल्कुल अवॉइड करें।
3: क्या ये सच है युवाओं को भी दिल की बीमारी का खतरा है?
4: हाँ, ये बिल्कुल सच है। आप सरप्राइज होंगे ये जान के कि इंडिया में 20 से 25% हार्ट अटैक 40 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को आते हैं, और इसमें महत्वपूर्ण ये भी है कि वो 40 साल का व्यक्ति अपने परिवार के लिए इकलौता इनकम का सोर्स होता है। अगर उसी को अगर हार्ट अटैक आता है तो परिवार पे क्या बीतती होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं।
3: डॉक्टर राजेश, आपसे जानना चाहूंगा कि आमतौर पर हमने देखा है कि जो युवाओं का हार्ट अटैक होता है वो या तो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, इसका कारण क्या है, हमारी युवा कैसे बच सकते हैं?
4: देखिए, जब एक्सरसाइज करते हैं तो दिल में खून का दौरा बढ़ता है, तो अगर पहले से ब्लॉकेज है तो आपको उसके लक्षण आने लगते हैं, या अगर एक्सरसाइज करते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रेस आप पे है तो जो ब्लॉकेज है उसके ऊपर क्लॉट बन जाता है, और जिससे हार्ट अटैक होता है। और हार्ट अटैक में मुख्यतः जो शुरू में आपने बहुत सारे वीडियोज में देखा हो कि एक्सरसाइज कर रहे हैं और अचानक गिर गए हैं और फिर उनका सांस रुक गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं दिल की धड़कन की गड़बड़ होती है, या तो बहुत तेज हो जाती है या बहुत कम हो जाती है।
3: वर्ल्ड हार्ट डे पर श्रोताओं के लिए आपका संदेश क्या होगा?
4: देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, आपके पास एक ही जिंदगी है, एक ही दिल है, और अगर आप सही फैसले लेंगे, सही एक्सरसाइज और सही डाइट करेंगे, स्ट्रेस और स्मोकिंग से दूर रहेंगे, तो दिल की बीमारी से आप बच सकते हैं। और अगर दिल की बीमारी हो गई है, आपको कुछ ऐसे लक्षण हैं, तो डॉक्टर से जल्द मिलें।
3: आपका बहुत बहुत आभार। आप स्टूडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता आए। धन्यवाद।
4: धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए।
5: रेडियो विदस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर विदस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
6: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
3: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
7: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
8: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
7: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
8: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
7: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
8: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
7: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
8: www.sdcollegeambala.ac.in।
3: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, Hamsafar, Zindagi Ka, a community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। अंबाला के प्यारे श्रोताओं, आज हमारे पास अंबाला के इतिहास और गर्व से जुड़ा एक बेहद खास तोहफा है। आप सब जानते हैं कि अंबाला का शहीद स्मारक अब बनकर तैयार है। ये वो पावन भूमि है जिसने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई का बिगुल फूंक कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आगाज किया था। ये स्मारक हमारे शहीदों के शौर्य और बलिदान का प्रतीक है और इसी महान विरासत को श्रद्धांजलि देने के लिए अंबाला के जाने माने संगीतकार श्री विशाल गोल्डी, ओम नमो संट्स, जिन्हें हम विशाल शर्मा के नाम से भी जानते हैं, लेकर आए हैं एक जबरदस्त स्वतंत्रता संग्राम थीम सॉन्ग। ये गीत अंबाला की मिट्टी की कहानी कहता है, उस जज्बे को सलाम करता है जिसने देश को आजाद कराने की लौ जलाई। इस गीत को विशाल गोल्डी और हरजीत बिट्टू ने मिलकर लिखा और कंपोज किया है। ये धुन आपके दिल में देशभक्ति का एक नया जोश भर देगी। पेश है अंबाला के गौरवशाली इतिहास को समर्पित शहीद स्मारक थीम सॉन्ग सभी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: चाहिए। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो बितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

0: नमस्कार, मैं डॉक्टर ललित जैन, निदेशक जनगणना निदेशालय हरियाणा, आप सबसे मुखातिब हूँ। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपसे जनगणना 2027 के प्रथम चरण अर्थात मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के बारे में बात करना चाहता हूँ। हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में है, जहाँ विकास की गति निरंतर बढ़ रही है। ऐसे में सटीक और अद्यतन आंकड़े हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती नहीं, बल्कि विकास की आधारशिला है। इसी के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और सामाजिक कल्याण की योजनाएं बनाई जाती हैं। जनगणना 2027 कई मायनों में विशेष है। यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। साथ ही नागरिकों को स्वयं जनगणना यानी सेल्फ इन्यूमरेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। हरियाणा में स्वयं गणना सेल्फ इन्यूमरेशन की अवधि 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है, जिसके दौरान आप घर बैठे अपनी जानकारी स्वयं ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इसके पश्चात 1 मई 2026 से जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकान की गणना का कार्य प्रारंभ होगा। इस दौरान प्रगणक आपकी जानकारी मोबाइल ऐप के माध्यम से घर घर तक जाकर एकत्रित करेंगे। मैं आपको ये भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जनगणना में दी गई आपकी सभी जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी, और जो भी आप हमें बताएंगे वह सर्वर्स के ऊपर बहुत सिक्योरिटी के साथ रखे जाते हैं। कोई भी अथॉरिटी इस जानकारी को हमारे से नहीं ले सकती। देखिए, टोटल 33 क्वेश्चंस इस बार की जनगणना के अंदर है, तो यूनिकनेस इस बार हम पूछ रहे हैं कि लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। तो समय के साथ, बदलाव के साथ हमने ये सवाल भी ऐड किए हैं। हमारी हेल्पलाइन 1855, मैं रिपीट कर देता हूँ, 1855 वो खुल चुकी है। यदि हरियाणा के किसी नागरिक को कोई कष्ट है, ये टोल फ्री हेल्पलाइन है 1855। आप अपने मोबाइल से या लैंडलाइन से डायल करिए, ये सीधा हमारे कॉल सेंटर के अंदर कनेक्ट होगा और उनको स्वयं जनगणना या ऑर्डिनरली कोई भी जनगणना से संबंधित सवाल है उसके बारे में गाइड कर दिया जाएगा।
1: मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में सक्रिय भागीदारी करें, सही और पूर्ण जानकारी दें और जनगणना को सफल बनाने में सहयोग करें। आइए हम सब मिलकर एक सशक्त और विकसित हरियाणा के निर्माण में अपना योगदान दें। धन्यवाद।
2: सही रास्ता, सही चुनाव। सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
2: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
3: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
2: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
3: www.sdcollegeambala.ac.in।
4: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz पर। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: सही रास्ता, सही चुनाव। सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
2: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
3: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
2: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
3: www.sdcollegeambala.ac.in।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: की दालच महल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दे। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: You are listening FM 90.0 megahertz. Radio Vitasta, हम सफर जिंदगी का।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
2: रेडियो विदस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर विदस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अब भी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 705641301 पर।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
4: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल R.D. सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। ४०० साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहाँ तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहाँ बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र। 8वीं सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वाइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति।
पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अम्बाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अम्बाला की धरोहर के बारे में जाने। हम प्रयासरत है और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रेडियो विदिशा 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज। रेडियो विदिशा, हम सफर जिंदगी का, हमारे अगले प्रोग्राम की प्रतीक्षा करें।
2: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
2: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
3: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
2: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें।
3: www.sdcollegeambala.ac.in।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विद स्टार 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विद स्टार। हम सफर जिंदगी का

0: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
2: नाइन्टी पॉइंट ज़ीरो मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफ़र ज़िंदगी का। सुनते रहिए दिल से।
3: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
4: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
3: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दे। FM 90.0 रेडियो वितस्ता, अब सभी अंबाला वासियों की दिल।

0: की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
2: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, Hum Safar Zindagi Ka, a community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

हमारा ये सफर यूं ही चलता रहा और गुजरती गई सदियां। पनाह गाहों में पनाह लेने की ख्वाहिश सीने में ही दब गई। तुमसे मिलना तुमसे बिछड़ना एक आदत सी बन गई। बीते लम्हे रुसवाई का रास्ता दे गए और पथरीली रेतीली राहें मंजिल का पता बता गई।

0: सफर
1: छूट गए साथी, सिमट गई जिंदगी, जज्बा मोहब्बत का टूट गया, बिखर गया हर पल अपना साया भी पराया होने लगा। जो मिले वो अचानक रूठ गए, यहां के साहिल दरियाओं से बिछड़ गए और इन दरियाओं के पत्थर पानी के लिए तरस रहे हैं। इन्हीं पानियों में कभी चांद आकाश से उतरकर डुबकी लगाया करता था, पर अब सब कुछ अलग है, भिन्न है, जब अपने ही पराए हुए

दिल की बातें ही बातें ही और है तुम्हारी फरामोशी। रंग बिखर पड़े हैं पर रक्स करती हैं फिजाएं। शायद सोचा होगा कि हवाओं के रुख में बदलाव होगा, पर ये जरूरी तो नहीं कि मौसम बदलते ही तुम लौट आओगे। इन घने बादलों को चीर कर, और यह भी तो जरूरी नहीं कि दिल की बातें हों बातों बातों में तुम याद आओगे।

एक प्यारा सा गांव है, पर अजनबी रास्ते हैं। किससे मुखातिब हो जाए, हर कोई एक दूसरे से अनजान है। इन फासलों के दरमियां अपने आप को भी पहचानना मुश्किल सा लगता है, लेकिन इसके बावजूद यहां खुशबू है अपनेपन की, यहां मिठास है मोहब्बतों की, और दूर एक कोने में यह दर्द भी बिकता है।

परी आसमां से उतरी थी, मुझे छूकर गुजर गई। अपने दुपट्टे से मेरी नींदों को चुरा ले गई। मेरे कानों में चुपके से कुछ कह गई। ये कुछ लम्हे तुम्हारे नाम हो गए, इनको संजो कर संभाल कर रखिएगा। अपनी दुआओं में मुझे शामिल कर मुझ पे एहसान जताया, नवाजिश करम, शुक्रिया।

जी, आप सुन रहे थे FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता के प्रसारण, और आज के प्रसारण अब यहीं पर हमारे आज के लिए संपन्न होते हैं। कार्यक्रम आप सुन रहे थे सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:02, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज के प्रसारण पसंद आए होंगे। और आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं पूरे दिन हमारे प्रसारण के साथ। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और होस्ट भरत सोपोरी। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। रेडियो वितस्ता 90.0 MHz पर आज का सफर यहीं तक था। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों, नई गीतों के साथ और मीठे बातों के साथ और ढेर सारी जानकारियों के साथ। पर आज भी अभी जाने से पहले आपसे एक खास विषय पर बात करेंगे और उसके बाद आपसे लेंगे इजाजत। आज की विशेष चर्चा है जो आज का दिन मनाया गया नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। श्रोताओं, आज 11 मई है जिससे हम पूरे गर्व के साथ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन 1998 में भारत ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण कर दिया था और अपनी शक्ति का एहसास कराया था। एक आम नागरिक के लिए इसके मायने क्या है वो हम आपको बता देते हैं। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है। अब जब आप अपने फोन से डिजिटल पेमेंट करते हैं, किसान जब मौसम का सटीक पूर्वानुमान पाता है, या जब दूर दराज के गांव में बच्चे ऑनलाइन शिक्षा लेते हैं, यही सही मायनों में तकनीक की जीत है। ये आम इंसान के जीवन को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाती है। देश की प्रगति और उज्जवल भविष्य के लिए कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूं। पहला है आत्मनिर्भरता। तकनीक हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहने के बजाय खुद के पैरों पर खड़ा करती है। दूसरा, आर्थिक मजबूती। नए स्टार्टअप्स और डिजिटल इंडिया अभियान से अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है। नंबर 3, सरकारों की भूमिका। सरकारों को चाहिए कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D पर निवेश बढ़ाएं और युवाओं को नवाचार यानी इनोवेशन के लिए मंच प्रदान करें। और चौथा, हमारा कर्तव्य जो सबसे जरूरी है। हमें तकनीक का उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को वैज्ञानिक सोच यानी साइंटिफिक टेंपर के लिए प्रेरित करना चाहिए। एक उज्जवल भविष्य तभी संभव है जब भारत का हर एक हाथ तकनीक से जुड़ेगा और हर दिमाग कुछ नया सोचने का जज्बा रखेगा। इसी सोच के हिसाब से सभी अंबाला वासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जिनके साथ की वजह से हम कोशिश करके नए टेक्नोलॉजी के साथ एक नया डिजिटल रेडियो आपके लिए भारत सरकार से लिया अंबाला के लिए, जो इस समय आप सुन रहे हैं और हर दिन सुनते हैं सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक 24/7 और पूरे साल के लिए। कभी इसमें छुट्टी नहीं होती है। हाँ, अगर कोई तकनीकी खराबी आती है तो कभी आप के लिए प्रसारण कुछ समय के लिए बाधित होता है, पर हमारी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी इस प्रसारण को आपके लिए सुचारू रूप से जारी रखें। तो यह था आज का विषय। जाते जाते आज के दिन की मुनासिबियत से ये चंद पंक्तियां आपके नाम करता हूं, और पंक्तियां यूं है, कलम से क्रांति होती थी अब सोच से निर्माण होता है। कलम से क्रांति होती थी अब सोच से निर्माण होता है। जहां विज्ञान मिलता है वहीं ऊंचा उत्थान होता है। जहां विज्ञान मिलता है वहीं ऊंचा उत्थान होता है। बदल रहा है भारत मेरा, बदल रहा है भारत मेरा नई तकनीक के दम पर। सपनों को जो हकीकत दे वही तो आधुनिक इंसान होता है। सपनों को जो हकीकत दे वही तो आधुनिक इंसान होता है। तो हमें समय के साथ बदलना जरूरी है, टेक्नोलॉजी के साथ अपने को डालना बहुत जरूरी है, ताकि हम टेक्नोलॉजी के साथ, प्रौद्योगिकी के साथ चलें और हम अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए पूरा योगदान दे सकें।
तो ये था आज का विवरण। जाते जाते आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 12 मई 2026 मंगलवार को पूरे दिन के लिए जो कार्यक्रम लाए हैं वो इस प्रकार है। 5:58 पर शुरुआत होती है वंदे मातरम से। लाते हैं आपके लिए प्रकाश प्रवाह और साथ में पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं पंचांग के साथ। 6 बजे भक्ति संगीत और 7:05 पर मंगलवार को सुनते हैं आप कार्यक्रम घर परिवार। कल एपिसोड 2 होगा। हमारे साथ होंगी हरजीत कौर लांबा, पेश करेंगे आरजे किडनी और 8:30 सकारात्मक कहानियों का एपिसोड 35 कर्मों के रईस। इस कहानी को पेश करेंगे नरेश शर्मा, जरूर सुनिएगा ये कहानी। 9:30 सुनहरे पल एपिसोड 5 मुकेश पर आधारित कार्यक्रम और 10:10 पर काव्य गोष्ठी एपिसोड 8। हमारे साथ होंगी इंदु शर्मा। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी और संगीत की सभा जारी रहेगी। 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 शाम में गजल कार्यक्रम और 7 बजे रेट्रो हिट्स एपिसोड 12। शीर्षक होगा ममता, पेश करेंगे आरजी किरनी। 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मरहटा और कल की कड़ी है मिले जुले गीत। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। आप अपना फीडबैक हमें जरूर भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर और उन सभी दोस्तों का, उन सभी श्रोताओं का हम धन्यवाद करते हैं जो हमें फीडबैक भेजते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर पर और साथ में फरमाइशें भी भेजते हैं। अगर आप इस समय मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अगर आप अंबाला के श्रोताओं को, अंबाला के वासियों को कुछ अपने अनुभव एक्सपीरियंस से मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो आप अपने बारे में भी हमें इसी नंबर पर लिखें ताकि हम आपको आमंत्रण दे सकें, आपकी बात को रिकॉर्ड कर सभी अंबाला वासियों तक पहुंचा सकें। हमारा नंबर नोट कर दीजिए, हमारा नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो वितस्ता 90.0 MHz पर, रेडियो वितस्ता। और उम्मीद करता हूं कि आप अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे, घर परिवार का ध्यान रखेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देंगे और बड़े बुजुर्गों का आदर और सत्कार करें। और साथ में जनगणना का पहला चरण जारी है, आपके घरों की जनगणना हो रही है। अगर आपके घर कोई अधिकारी आए तो उनसे अच्छे से बात करें, उन्हें पानी ऑफर कीजिए और वो देश निर्माण के लिए आपके पास आए, उन्हें इज्जत और सम्मान दे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे लेता हूं इजाजत। कल सुबह 5:58 पर आपसे फिर बात होगी। तब तक के लिए शुभरात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।